सुप्रभात। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17 तारीख, तदनुसार 7 जून वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58:36 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की

0: मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले विविध भारती मुंबई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ, 6:45 पर संगीत सरिता और 7 भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के युगल गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 8 समाचार प्रभात, 10 का समय रहेगा हिंदी समाचार का और 12 हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। सायंकालीन प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर हिंदी में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से और 6:20 पर पंजाबी समाचार विविध भारती के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

दोपहर समाचारों में 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि हिंदी समाचार सुनिएगा 8:45 पर और रात 11:00।

विविध भारती मुंबई से त्रिवेणी सुनिएगा प्रातः 8:15 पर और चित्रलोक का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:30 और रात्रि 8:15। हमारे केंद्र से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार आप सुनेंगे। कार्यक्रम आज का अखबार के अंतर्गत समय रहेगा 9:30। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ प्रसारित किया जाएगा 10:05 पर। आज का विषय है भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के अंतर्गत जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल सफर की कहानी जिंदगी नामा सुनेगा प्रातः 11:00। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा विविध भारती चंडीगढ़ से। साढ़े 11:00 सुनेगा कार्यक्रम आकाशवाणी हेल्पलाइन। इसके अंतर्गत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सीनियर रिसर्च ऑफिसर श्री संजीव मीणा से अश्विनी कुमार की भेंट वार्ता। विविध भारती मुंबई से 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2:00 त्रिवेणी, 2:30 पर गोल्डन हिट्स सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 3:00। 3:30 पर नाट्य तरंग और शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनेगा उजाले उनकी यादों के। छह बजकर 30 मिनट पर सुनेगा शब्द कीर्तन का कार्यक्रम अमृत वाणी जयमाला। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:00। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से श्री रामचरित मानस।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये

अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उप

0: शास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
0: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
0: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी
0: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
0: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा
1: जी।
0: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
0: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
0: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
0: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका
0: कहरवा है, धागे न तीन अक धीन
1: जी।
0: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
0: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखा।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: नहीं, नहीं नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, उसका कोई नाम ना दे हम
1: जी,
0: लोग
1: जी। तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी। हाँ।
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने ओ रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में केरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमारी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है, तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: तकद्दम। ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमारी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी जी, इस जी। उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमारी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता
1: सावन
0: जाए।
1: बीता जाए, तो इसमें जो धुमारी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: शास्त्रीय संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती,
1: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।

आप सुन रहे थे बालयोगी फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। विविध भारती से श्रोताओं इस

आप सुन रहे थे बालयोगी फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: गोपी नैयर के संगीत निर्देशन में शमशाद बेगम की आवाज थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे 12 o'clock फिल्म से।
1: T-A-T, cat, cat माने बिल्ली।
2: R-A-T, rat, rat माने चूहा।
1: C-A-T, cat, cat माने चूहा। अरे

0: GOAT goat, goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Mad, mad,

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सुरों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, रवि का संगीत था। भूले बिसरी गीत कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: फिल्म अनहोनी का दो गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया, सत्येंद्र की बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम की कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: 3 बजे, मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

0: मेरा नाम जोकर स्वर्ग गीत था आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोलों को शुरू में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म बॉबी का ये गीत है लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

0: लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत आपने सुना। विठल भाई पटेल की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओ, यही थी हम है राही प्यार के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा

0: प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते

0: सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है,

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच

0: पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अगला कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहां तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी, बैंगन का भरता,

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: और अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी। दीजिए राजन को इजाजत, नमस्कार।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता, भोर की सुनहरी किरणों पर सवार विविध भारती की सुर लहरियों पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम चित्रलोक, और ये रहा चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो सेट पर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में।

0: पद्मावत फिल्म का गीत आपने सुना नीति मोहन की आवाज में। सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे, संजय लीला भंसाली का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत था। अन्विषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शाहबाब साबरी की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। श्रोताओ, आज जाने माने लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की जन्म जयंती है। अपने लंबे करियर में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, नाटक, उपन्यास, कहानियां सभी लिखी। 45 फिल्मों की लगभग पटकथा स्क्रीन प्ले भी लिखा। 7 जून 1914 को हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कॉलम भी लिखे जो भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास को समानांतर सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा का अग्रदूत भी माना जाता है। फिल्म नीचा नगर जो 1946 में रिलीज हुई, उसकी पटकथा भी उन्होंने लिखी, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। उन्होंने राज कपूर की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां और पटकथाएं भी लिखी, जिनमें आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, भाभी और हिना भी शामिल हैं। 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म सात हिंदुस्तानी के माध्यम से उन्होंने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया। साहित्य और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 1 जून 1987 को ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

0: हिट स्टोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार का लिखा, आवाज थी हर्षित सक्सेना की, तर्ज भी थी हर्षित सक्सेना की। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे

0: गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें, जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
1: तो सुनना न भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: चित्रलोक अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज, फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का, जावेद अली को आपने सुना फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे।

0: गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें हैं। जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
1: तो सुनना न भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

दिया है वो बेहद सुरक्षित रहे, दूषित भोजन खाने से बचें जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे कुपोषण और गंभीर पेट की बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। खाना पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बीमारियों से हम दूर रहें। न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है, बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

जैस्मिन सेंडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन का लिखा ये नगमा था, शाश्वत सचदेव का संगीत था, धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो

0: अरमान मलिक की आवाज थी, साथ ही नीति मोहन को भी आपने सुना। रश्मि विराग के बोल थे, अरमान मलिक का संगीत था हेट स्टोरी 3 फिल्म का, ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: अब प्रस्तुत है जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता कपूर, आज हूं आपके साथ। कार्यक्रम है आज का अखबार। शुभ रविवार और ढेर सारा प्यार। दोस्तों कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। दिल तो प्यार से भर जाता है, लेकिन पेट तो खाने से ही भरता है। पौष्टिक और साफ सुथरा अगर खाना हो तो फिर बात ही क्या। आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। सभी के लिए सुरक्षित पोषण से युक्त भोजन उपलब्ध हो, खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना, ये तो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लक्ष्य और उद्देश्य। दोस्तों हर साल 6 करोड़ खाद्य जनित रोगों के मामले सामने आते हैं, और इस अभियान का उद्देश्य खेत से लेकर मेज तक खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, ये है वर्ष 2026 का विषय। आज सुरक्षित भोजन तो कल स्वस्थ जीवन। तो दोस्तों आज और हर दिन स्वाद के साथ साथ खान पान में सेहत का भी रखें ध्यान। आप और परिवार रहें सेहतमंद, यही है हमारी कामना। सादा स्वच्छ खाना और सेहतमंद जीवन।
4: ये समझो और समझाओ, होली में मौज मना।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार और अब समय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचारों का। भारत ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 विरासत परियोजनाएं सौंपी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से की मुलाकात। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक की अफवाह को किया खारिज। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन पर कड़ी निगरानी का किया आह्वान। सीबीएसई 12वीं की री वैल्यूएशन शुरू, दो दो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं पेपर चेक। ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में पुराने नंबर इवेल्युएटर को नहीं चलेंगे पता। घरेलू रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी, कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए होगी। जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी। अमेरिका ईरान जंग से क्रूड में तेजी, पेट्रोल डीजल महंगा होने से कीमतें बढ़ाने का बना दबाव। आरबीआई का नया नियम ईसीएल डायरेक्शन 2026 1 अप्रैल 2027 से होगा लागू। 730 से कम सिबिल स्कोर वालों को झटका, होम ऑटो लोन होगा मुश्किल। खाने के तेल के पैक साइज तय, कीमत तुलना करना होगा आसान और बाजार में कम होगा भ्रम। हॉर्मुज में अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दागी मिसाइलें। अब कुछ खेल समाचारों में, अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारत आज 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलेगा। क्रिकेट की नई सनसनी बने वैभव सूर्यवंशी, टीम इंडिया में चुने गए सबसे युवा खिलाड़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बाकी 4 दिन, आगाज होगा 11 जून से। 48 टीम, 104 मैच, 39 दिन और 16 मेजबान शहर। दूसरा सबसे महंगा वर्ल्ड कप, करीब 600 करोड़ लोग देख सकेंगे ये वर्ल्ड कप। 18 कैरेट सोने से बनी ट्रॉफी, वर्ल्ड चैंपियन को मिलेगा $50 मिलियन इनाम। श्रोताओ, ये तो थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और मुख्य खेल समाचार। गीत से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।

0: गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें, जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
1: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: आइए अब सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। आइए अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी सुर्खियों की ओर। समय है क्षेत्रीय समाचारों का। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को दिया अंक सुधारने का एक और मौका। ये सुविधा मिलेगी केवल एक विषय के लिए ही। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, ट्रेन का फर्श फटकर गिरा पटरी पर, 80 यात्री बाल बाल बचे।

0: फिरोजपुर फाजिलका रोड पर हादसा। अस्थियां विसर्जित करने जा रहे परिवार की पिकअप ट्रॉले से टकराई, 10 की मौत, 20 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शोक व्यक्त और की मुआवजा देने की घोषणा। पंजाब में देर रात 6 आईएएस अफसरों के तबादले, इनमें शामिल हैं अधिकतर सीनियर आईएएस अधिकारी। गुरदासपुर यूनिवर्सिटी में एआई रोबोटिक्स समेत 5 नए फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स शुरू, राज्य को टेक और स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी। पंजाब सरकार की नई पहल, स्कूली छात्रों को सिविल अस्पतालों में कराएगी इंटर्नशिप। प्रोग्राम की अवधि 14 से 30 दिन, पहले फेज में 10 जिलों का चयन। जींद सोनीपत रूट पर जल्द चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेल मंत्री ने ट्रेन सुरक्षा मानकों और तकनीक का किया निरीक्षण। ২০২৬-২৭ का स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी, 30 जून से हरियाणा में सजेगा खेल का मैदान। मिल्खा सिंह की याद में 20 नवंबर को फिट हरियाणा मैराथन भी। सुबह ओडिशा से खेलकर लौटे राष्ट्रीय खिलाड़ी पारस की कैथल के मालखेड़ी में बाइक टक्कर से मौत। हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ी राहत, मिलेगी 10 लाख की बीमा पॉलिसी। हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल बैठक में हुए कई अहम फैसले, सरकारी भूमि नियमितीकरण नीति 2026 को मिली मंजूरी, हिमकेयर योजना चलेगी बीमा मॉडल पर। श्रोताओं, ये तो थी रीजनल हेडलाइंस। यहाँ लेंगे अंतराल और उसके बाद आपको सुनवाएंगे एक गीत।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि एचआईवी पॉजिटिव माँ भी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे एआरवी दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे

0: को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम आज का अखबार में आइए अब आपको लिए चलते हैं ट्राई सिटी की ओर कुछ स्थानीय समाचारों के लिए। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर बड़े कंसर्ट की तैयारी। सारंगपुर में पहला लाइव कंसर्ट 21 जून को। स्पेशल लाइट्स, सजावट, हाई मास्ट पोल और पावर बैकअप, चकाचौंध की तैयारी शुरू। शहर को शोज के दौरान ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए चुना गया सारंगपुर। चंडीगढ़ का चढ़ा पारा, 4-5 दिनों में 40 डिग्री के पार जाने के आसार। 10 जून के बाद बादल छाने के आसार। 27 जून से प्री मॉनसून की पड़ सकती हैं बौछारें। पंचकुला नगर निगम की 200 करोड़ की श्यामलात जमीन एक निजी होटल

एक्साई को ट्रांसफर करने का मामला उजागर, मेमो जारी, डीसी व निगम कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। आज है वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर्स डे। शहर की महिलाओं की कहानियां दे रही संदेश, कैंसर अंत नहीं, हो सकता है नई शुरुआत। जीएमसीएच 32 में रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या के बाद बढ़ी चिंता, सफेद कोट के अंदर तनाव मचा रहा शोर। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई निदेशक से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग। अमन चमन अंबेडकर कॉलोनी और धनास को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शुरू, 20,000 से अधिक लोगों को मिलेगी राहत। पीयू में ग्रेजुएशन कोर्सेज के दाखिले शुरू, 1 जुलाई तक करें आवेदन। ये तो थे कुछ स्थानीय समाचार।

0: दोस्तों, ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से, और आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम है उसी पर आधारित। विषय है भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। मिलेंगे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ लेकर 10:05 पर। अब अपनी रेडियो संगिनी बबीता कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार।

आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 10 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होरमूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया चवालेंस्का को

0: सीधे सेटों में 6-3 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।

0: जिंदगी।
1: गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें है। जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
2: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
3: अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है आपकी रेडियो संगिनी बबिता कपूर। दोस्तों आज है रविवार और रविवार को सारा परिवार होता है एक साथ और खाने का जो मजा एक साथ मिल बैठकर मिलता है वो अकेले में नहीं मिलता। और अक्सर शनिवार और रविवार को चाहे बड़े हों या छोटे बाहर खाने का मन बना ही लेते हैं, या यूं कहें कि रविवार या शनिवार ये तो बस एक बहाना है, बाहर का खाना खाना है। और बात जब बाहर के खाने की हो तो साफ सफाई, शुद्धता, पौष्टिकता की कोई भी गारंटी नहीं। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और हेलो चंडीगढ़ का विषय है भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। तो चलिए करते हैं बात अपने श्रोताओं के साथ। हमारे नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए करते हैं अपने पहले कॉलर के साथ बात। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: जी खाद्य पदार्थ पर हमारा आज टॉपिक है ना।
0: जी जी।
1: तो मेरे विचार से जो हमारा आज जो विशेष दिन है खाद्य पदार्थ के लिए
0: जी,
1: तो कई बार हम देखते हैं कोई शादियां, कोई ऐसे प्रसंग होते
0: जी,
1: खाने का जो बिगाड़ होता है हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। हो सके इतना हम खाद को, यानी खाद ऐसी चीज है तो उसको जितना जरूरत है इतना ही लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर फूड वेस्टेज की बात की है, बिल्कुल सही बात है कि जितना ज़रूरी हो, क्योंकि शादी ब्याह में ऐसा होता है कि बहुत सारी ऑप्शंस बना दी जाती हैं, जितना कि खाया भी नहीं जाता उतना वेस्ट कर दिया जाता है। तो बात वैसे यहाँ पर आज के टॉपिक में हम स्वच्छता की कर रहे हैं, लेकिन बात भोजन की है तो भोजन में वेस्टेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि वेस्टेज ना हो, खाना बचाया जाए, या अगर बच भी जाता है तो उसे दान कर दिया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सारा जो

0: फेंकना है वो हमें कूड़ेदान में ही फेंकना है। आसपास कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जहां पर गरीब बच्चे रहते हैं या ऑर्फनेजेस हैं, वहां पर भी आप जो है फूड को डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की,

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आइए करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ बात। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम, राजेश कुमार चौहान जालंधर से।
0: जी नमस्कार जी राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, पर अब ये एक साथ से इसके ये जोड़ देना चाहिए जैसा खाए अन्न वैसा हो मन और तन, क्योंकि हम अगर साफ सुथरा भोजन खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा। तो इसके लिए लोगों को चाहिए, मैंने देखा है कि लोग जो खास करके ऑफिस में जो होते हैं
0: जी,
1: वो लंच में ना अपने हाथ धोने से पता नहीं क्यों डरते हैं। काम करते जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हाथ नहीं धोएंगे, बस सीधा खाना खाना शुरू कर देंगे। उनको ये नहीं पता कि इससे

0: कितनी बीमारियां लग सकती हैं और लग भी रही हैं
1: हमारे सामने कई बार। जिस सिस्टम पर आप बैठे हो, जिस कीबोर्ड को आप यूज कर रहे हो, आपसे पहले और आपके बाद भी बहुत से लोग हैं जो उसे इस्तेमाल करेंगे और उनका हाइजीन कैसा है उसे आप नहीं जानते हैं।
0: और जैसे हम कंप्यूटर को साफ करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो वो हमारे हाथ में लगेगा।
1: बिल्कुल, वो भी केमिकल
0: हमारे
1: जी वो भी केमिकल है। जैसे कि देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था कि हम लोगों ने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था, जिससे कि हमारी सिर्फ त्वचा

0: हाँ जी
1: जी वो भी केमिकल है। जैसे कि
0: हाँ
1: देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था कि हम लोगों ने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, जिससे कि
0: बिल्कुल
1: हमारी सिर्फ त्वचा ही नहीं उससे प्रभावित हुई बल्कि हमारी इम्यूनिटी पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ था।
0: था मैडम, बिल्कुल
1: जी,
0: क्योंकि लोगों ने हाथ उस टाइम भी हाथ धोने से बहुत लगा रहे थे सैनिटाइजर, वो हाथ वो धोने नहीं, वैसे ही रोटी वगैरह खा लेते।
1: चलिए उस वक्त तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग मतलब इतने ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए थे और इतना ज़्यादा कह लीजिए कि वहम भी बहुत लोगों में आ गया था उस वक्त कि हाथ बार बार धोए जा रहे थे, सैनिटाइजर्स बार बार इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन ये ज़रूरी है जानना कि जो सैनिटाइजर है वो भी एक केमिकल है और जो चीज़ आपके हाथों पर लगी है और अगर आप बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो वो आपके अंदर ही जाएगी और इससे क्या होगा कि आपको कोई भी शारीरिक परेशानी का सामना
0: बिल्कुल
1: करना पड़
0: मैडम,
1: सकता
0: आपके
1: है।
0: प्रोग्राम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो स्कूल के टीचर हैं वो चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हमें जब लंच करेंगे या कुछ भी खाएंगे तो उनको टाइम दे के वो अपने हाथ धोने के लिए कहें उनको, बच्चों को, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि स्कूलों में ऐसा कोई इंतजाम है।
1: नहीं देखिए जो छोटी क्लासेस हैं ना, जो नर्सरी प्री नर्सरी LKG UKG के बच्चे हैं उनको तो टीचर्स ज़रूर समझाती हैं कि क्योंकि वो शुरुआती दौर है ज़िंदगी का जिसमें कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो पर्सनल हाइजीन की भी क्लासेस लगाई जाती हैं स्कूलों में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी मनमर्जी अपने मालिक हो जाते हैं मन के, तो उस वक्त भी इन बातों को बार बार याद दिलाना, बिल्कुल सही कहा आपने कि टीचर्स को बोलना
0: नजर रखनी चाहिए बच्चों पे ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बात करने के
0: लिए।
1: थैंक यू जी।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।

0: कि गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें हैं। जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
1: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: दोस्तों, आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और हेलो चंडीगढ़ का विषय है भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
3: मैडम नमस्कार, शक्तिजन मोहाली खड़ से।
2: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
3: मैम, आजकल ऐसा है कि बच्चों ने जो इनके जो नई पीढ़ी है उसने तो कोरोना काल से कुछ नहीं सीखा, और बच्चे देखो आजकल कैसे बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, रेडी फड़ी इतनी लगी हुई है मार्केट में, खुले में बेच रहे हैं सामान।
2: जी बिल्कुल,
3: और बच्चे बिना हाथ धोए वो रेडी फड़ी वालों से खरीद के खा रहे हैं, बिना फल कटे हुए हैं, रेडियो पे फल कटे काट के रखे हुए वो खा रहे हैं बच्चे आजकल।
2: जी बिल्कुल, आपको नहीं पता कि जो कटे हुए फल या सब्जियां, जो सलाद भी वो बेचते हैं वो कितना साफ है, धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है। तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि बाहर खाने से बचें। अच्छा लगता है, जंक फूड सभी को पसंद है, लेकिन कोशिश करें कि घर में ही बनाएं, घर का बना हुआ ही खाएं। और हाथ धोने की जो आपने बात की, आपसे पहले भी एक जो कॉलर थे उन्होंने हमसे यही जो है बात साझा की है कि हाथ ज़रूर धोने चाहिए, और बिल्कुल ज़रूरी है हाथों का धोना, क्योंकि सबसे पहला जो स्पर्श है वो हाथ करते हैं, और उसके बाद जो निवाला जो आपके मुँह में जाता है, पेट के अंदर जाता है, उन्हीं हाथों के जरिए जाता है।
3: और इसका सरकार को भी कुछ चाहिए, इन रेडी फड़े वालों के कोई बैन लगाए, जैसे इनको सामान ढका होना चाहिए। अगर हमें हमारा भी कुछ फर्ज है कि बच्चों को समझाए इसके बारे में कि जो बाहर का हम खा रहे हैं उसमें कितना गंदा गंदा केमिकल जा तेल लगा रहे हैं वो।
2: जी बिल्कुल, मिलावट का भी दौर है। और दूसरी बात, जो आपने तेल की बात की है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो परेशानी होती है शरीर को, वो इसी तेल से होती है, क्योंकि ये जो तेल है वो रीयूज़ करते हैं, और एक बार नहीं कई मर्तबा उसी तेल में तला जाता है जिसे परोसा जाता है बाहर थालियों में।
3: मैडम, ये लोग तो तेल बदलते नहीं है, आज जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो पता नहीं कितने दिन तक चलता रहेगा, उसी में बनाई जा रहे हैं और बच्चों को खिलाई जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल,
3: बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है, इनके हमारे समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग।
2: जी बिल्कुल, ये तो हमें ही समझना है और हमें ही समझाना है अपने बच्चों को। बच्चों के साथ साथ जो वयस्क बड़े भी बड़े शौकीन होते हैं बाहर का खाने के, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं, क्योंकि जितना भी बाहर मिलता है ज़्यादातर फ्राइड फूड ही होता है, तो उस तेल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो तेल कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया जा चुका है, और जितनी मर्तबा उसको रीहीट किया जाता है उतना ही

0: दुनिया चपटी हो या गोल,
1: हमको क्या।
0: धरती पे सूरज का कंट्रोल,
1: हमको क्या।
0: चांद की जो खुल गई है पोल,
1: हमको क्या।
0: हिंदी इंग्लिश

0: रखो क्लास के अंदर,
1: राखी रखो क्लास के अंदर,
0: अपनी समझ के बाहर है, अपनी समझ के बाहर है तालीम के ये हथकंडे।
1: हथकंडे

0: तो बहा बिना आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़।
1: बबीता कपूर जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: आपको भी मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है।
1: सुनाई दे रही है जी
0: बिल्कुल। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी, मुझे सुनाई
1: दे आवाज आ रही है जी।
0: जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज।
1: ठीक है जी, आपकी आवाज कम आ रही थी।
0: जी
1: मैं तीसमा सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: जी सतीश जी बोलिए, कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय पर?
1: कुछ बातें हैं जी। खाना बनाने वाला कितना साफ सुथरा है
0: जी,
1: या उसकी जगह कितनी साफ सुथरी है
0: जी,
1: ठीक है ना जी, ये देखना चाहिए। या उसके उसे खाना बनाने वाले जो बर्तन है कितने साफ सुथरे हैं जो हमारे अंदर जाएगा
0: जी। बिल्कुल,
1: खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: फल सब्जियां उसने धो के बनाई है, दाल धो के बनाई है नहीं
0: जी,
1: ठीक है ना जी।
0: जी बिल्कुल,
1: ये भी काउंट होना चाहिए जी।
0: जी बिल्कुल, देखिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके जो किचन कैबिनेट्स हैं, आपकी जो किचन की शेल्फ्स हैं,
1: सीधे बैठकर खाना चाहिए ना लेटो।

0: ना वास्ता।
1: जी बिल्कुल, टेढ़े मेढ़े होकर
0: खाना खाएं आप।
1: देखिए आजकल ना टेलीविजन देखकर खाना खाने का बहुत चलन है, तो बच्चे जो हैं वो बेड पर ही बैठ जाते हैं,
0: मोबाइल पे ध्यान होता है, टीवी पे ध्यान होता है, बुर्की ले रहे हो खा रहे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: इससे वो आके भी नहीं खाते।
1: जी बिल्कुल,
0: ना चुबा के खाना ना वास्ता, खाने का तो ध्यान ही नहीं, फिर हमारा अनबैलेंस हो जाता है, हम संतुलित नहीं रहते, हमें बीमारियां लग जाती हैं।
1: जी बिल्कुल, वो खाना पचता नहीं है अच्छे से, क्योंकि अगर आपने चबाया ही नहीं है अच्छे से तो वो पचेगा भी कैसे।
0: बड़ी बड़ी फास्ट फास्ट खाते हैं जी, टाइम नहीं लगाते खाने को, जो मेन है जी, उससे हमारा शरीर चलेगा, कभी हमारी कार्य क्षमता एफिशिएंसी बनेगी, अगर हमारा शरीर ही नहीं काम करेगा तो हम क्या करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: खाना अहम है जी सबसे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना जी।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें जी।
1: जी बिल्कुल,
0: जो बाहर के फास्ट फूड है ना
1: जी,
0: है ना जी।
1: जी जी,
0: ये नहीं खाने चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए गोलगप्पे टिक्की वाले के हाथ साफ सुथरे हैं या उसने ग्लव्स जो पहने हैं नहीं पहने।
1: जी बिल्कुल,
0: देख लेना चाहिए जी।
1: जी,
0: अगर कभी कभार बाहर कुछ खाता कोई आदमी जरूरत पड़ने पर, देख लेना चाहिए जी।
1: जी, देखने के साथ साथ हमें ये लगता है कि हम टोकने का भी हमें अधिकार है, अगर हमें लगता है कि उनके हाथ साफ नहीं है, या अगर आपने जैसे गोलगप्पे या टिक्की की बात की है तो उन्होंने कपड़ा भी रखा होता है जिसे कि बार बार, जिससे वो अपने कैबिनेट को साफ कर रहे होते हैं, पानी गिर जाता है गोलगप्पे का तो वो बार बार उसी से साफ करते हैं, और वो कपड़ा पता नहीं बरसों से धुला भी है या नहीं।
0: देखो यही एक दो डोल रखा हुआ है, उसी में बर्तन प्लेटें दो दो के हमें खिलाई जाती है।
1: बिल्कुल, वो साफ पानी नहीं,
0: अच्छी तरह साफ करें।
1: देखिए हम पैसे देते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, बाहर का खाना खाने में कोई इतनी वो मतलब गुनाह नहीं है कि हमने कोई गुनाह कर दिया खाकर बाहर, लेकिन हमारा ये अधिकार बनता है कि जहाँ भी आप खा रहे हो हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई अपने हाथ धो लो, या ग्लव्स पहन लो, या ये जो कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो इसकी जगह पर साफ कपड़ा इस्तेमाल करो, क्योंकि हम, हमारा ये अधिकार है एज अ कस्टमर, हमारा ये अधिकार है कि हम उन्हें टोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं ऐसा करने से।
0: जी जी, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जी,
1: जी
0: सारी बातों का।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कार्यक्रम में बात करने
0: के लिए। थैंक यू वेरी मच जी।

0: श्रोताओ, हेलो चंडीगढ़ का आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार जी।
1: तो वैसे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: और आवाज जो है वो गूंज रही है आपकी तरफ से। आप क्या रेडियो के साथ बैठे हैं?
1: हाँ जी।
0: तो आप रेडियो से दूर चले जाइए।
1: मैं दूर हूँ, एक कमरा दूर हूँ।
0: चलिए, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर।
1: मैं तो ये कहना चाहता, सफाई रखनी चाहिए किचन की।
0: जी,
1: जो जो किचन है वो ही सफाई होनी चाहिए, जिससे बीमारी आरा वगैरह दूर हो।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: ओके।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: मैडम, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार हाट मंडी हिमाचल प्रदेश से ही।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हिमाचल में अच्छा मौसम होगा मेरे ख्याल से आज के दिन।
2: बहुत बढ़िया मौसम है मैडम जी, टूरिस्टों की भरमार है
0: जी,
2: और बहुत मतलब रमणीय स्थल जो है वो तो भरे ही भरे हैं
0: जी। बिल्कुल, टूरिस्टों
2: के अलावा जो गांव के जो भी जो अनजाना अनछुआ जो हिमाचल है, गांव का हिमाचल
0: जी,
2: वहां पर भी टूरिस्टों की काफी भीड़ पहुंच रही है मैडम जी।
0: जी, टूरिस्टों की भरमार है और बाहर के खाने की भी बहार है।
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ मैडम जी, बहुत अच्छा विषय है
0: जी,
2: और ये खाद्य स्वच्छता जो है वो एक बहुत ही जरूरी है, और जो सुझाव आप दे रहे हैं वो भी वास्तव में बहुत उम्दा किस्म के हैं, क्योंकि जो हम सोच भी नहीं सकते, कई लोग कई तो ऐसे भी सुझाव आ रहे हैं
0: जी,
2: क्योंकि रोगाणुओं को मारने और अपने खाने को उचित तापमान पर पकाना या एक्सपायरी डेट देखना या फिर अधपका या पुराना जो खाना है, जो बासी खाना है उसको नहीं खाना, और अपने चॉपर या चाकू जो है वो भी साफ रखने, और नॉन वेज और वेज के लिए अलग अलग चॉपर जो है वो इस्तेमाल करें, जो बोर्ड होते हैं सर मैडम जी कटिंग के
0: जी, जी।
2: इसके अलावा जो
0: आपने तो नेगी जी जितने भी सारे पॉइंट्स है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे ही आपने कवर कर दिए कि फ्रिज की भी सफाई रखनी है।

0: है, बासी खाना खाने से भी बचना है, भोजन को सुरक्षित तापमान पर भी पकाना है, और एक्सपायरी डेट्स, ये बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा बताया है कि एक्सपायरी डेट्स, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और जल्दी से सामान खरीद लेते हैं बिना चेक किए कि वो एक्सपायर्ड है या वो फ्रेश है। तो घर आने के बाद या कई बार तो इस्तेमाल करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता है कि हमने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर उड़ेल लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि एक्सपायरी डेट्स ज़रूर चेक करें।
1: जी मैडम जी, ये बहुत लाजमी है मैडम जी, क्योंकि ये जो इकोलाइज जर्म्स होते हैं ना जी खाद्य पदार्थों में
0: जी,
1: वो जब हम पेट में उसको पका नहीं पाते और पेट की खराबी का जो, तभी उसका जाकर के पता लगता है
0: जी,
1: या फिर टेस्ट में वो पता लगता है कि हम कितने बीमार हुए हैं और किस वजह से बीमार हुए हैं।
0: जी जी,
1: खासतौर पर, हेलो
0: हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है मुझे।
1: खासतौर पर मैडम जी, ये जो फ्रिज में रखा खाना होता है या फिर जो दूध पनीर और मछली, ये इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसका हम अक्सर जो है वो एक्सपायरी डेट जिनके ऊपर नहीं छपी होती है
0: जी,
1: मीट और मछली अंडे के ऊपर, उनको भी चेक करके ही हम इस्तेमाल करें। और जो फलों को पकाने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं उन भी ठीक से धुलाई करें, उनका भंडारण जो है बहुत ज्यादा लाजमी होता है जी, उनको किस जगह पर आपने, और खाद्य पदार्थ पकाने की जो जगह है और पकाने वाला है वो कितना स्वच्छ है, वो भी बहुत लाजमी होता है मैडम जी।
0: जी बिल्कुल, और आजकल तो देखिए आम का मौसम है और ज्यादातर जो आम बिकता है मार्केट्स में वो पकाया हुआ होता है, मतलब एक तो होता है कि नेचुरली पका हुआ आम, नेचुरली पका हुआ आम बहुत कम बाज़ारों में मिलता है, लेकिन जिन पे केमिकल लगाया गया है वो आम मिलता है। तो ख़ासतौर पर जब हमने उसे खाना है बाज़ार से खरीद कर, तो पहले उसको आप अच्छे से धोएं, उसको कुछ देर के लिए पानी में, साफ़ पानी में भिगो कर रखें, उसका टेम्परेचर, क्योंकि बहुत गर्म होता है, आम की तासीर भी वैसे भी गर्म होती है, और उसको अच्छी तरह से धोना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ देर के लिए अगर आप उसको पानी में डिप करके रख देते हैं तब भी उससे कुछ केमिकल जो है वो रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, उसके बाद दोबारा से उसको पानी से धोएं, साफ़ पानी से, और उसके बाद ही आप उसे इस्तेमाल करें।
1: ये केले और जो हमारे यहाँ पर जो सेब होते हैं इसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि उनका रंग बदलने के लिए और उनको पकाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो नमक और सिरका का जो पानी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हम भी इस्तेमाल करते हैं मैडम जी, अपने ही फलों को साफ करने के लिए, उसके ऊपर यहाँ तक कि उनको चमक लाने के लिए जो मोम की जो एक परत चढ़ाई जाती है पानी जैसे मोम की, वो उसको उतारना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी।
0: बहुत कुछ चल रहा है मार्केट्स में, बहुत ही सेहत के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, मिलावटखोर जो लोग हैं वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि केमिकल रंग भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि कुछ आर्टिफिशियल कलर्स इंजेक्शंस तक लगाए जाते हैं, मतलब फलों को मीठा करने के लिए, उनका रंग बदलने के लिए, उनमें खूबसूरती लेकर आने के लिए, तो
1: उनका साइज बिल्कुल बढ़ाने के लिए मैडम जी, ये जो भैंस को पसूने के लिए जो इंजेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, वो इंजेक्शन लगाया जाता है, फल मतलब आज जो है छोटा है कल दिन को बड़ा हो जाता है, फ्रिज में रखी रखी सब्जी जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है, तो ये उसी की वजह से होता है। तो इन चीजों से सावधान रहना चाहिए और हमें तो सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो अपनी लेबोरेटरीज में इस तरह की सब्जी मंडी में और दूसरी जगहों पे जो छापेमारियां और वो करें, सिर्फ त्योहारों पर ही मिलावट वाली मिठाइयां और दूसरी चीजों के ऊपर संज्ञान ना लें, बल्कि साल भर इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है निगी जी, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप कार्यक्रम में आए और हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद मैडम जी, ये बहुत कुछ हमने आपसे ही सीखा है।
0: जी हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, हम आपसे सीख रहे हैं और हमारे सुनने वाले जो हैं वो सभी, हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जिंदगी सीखने का ही नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का विषय है भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: हाँ, सेवा तिवारी सेक्टर ना पंचकूला से वापसी गेंद होटल से बोली थी, रेस्टोरेंट से दीदी।
0: जी जी, तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर आप?
1: आज क्या दीदी, देखो ऐसा कि आदमी शादी ब्याह में चाहे घर पे कहीं भी खाना बनावे तो उतने ही बनावे कि ज्यादा खाना फिर नुकसान हो रहा है, बेस्ट में जाए नहीं, क्योंकि वो जो खाना बेस्ट में जाता है तो वो दीदी किसी के दूसरे के जो पेट में जो जाए, जो बच भी जाता है तो चलो जो तुम्हें गरीब लोग बैठे हैं वो उनको तो बांट दिए, गांव में हो तो तुम्हें गांव में तो बांट दिए, क्योंकि खाना वो फेंके नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये अन्न देवता है, ये तुम्हें फेंको तो वे शराब देते हैं कि जाओ हमको फेंकते हो तो फेंको बस, क्योंकि वो खाना अन्न देवता है, इनको जरूर से आदमी को ज्यादा बेस्ट नहीं तुम्हें करना चाहिए दीदी, हमारे वैसे तो कहीं ना कहीं ये है दीदी।
0: जी बिल्कुल जी, तिवारी जी आपने जो बात कही वो खाने की बर्बादी को लेकर कही, वो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई निवाला आप किसी दूसरे के मुंह में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा है तो, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन

0: जो हमारा आज का विषय है वो खाना बनाने और खाने में स्वच्छता यानी कि सफाई को लेकर है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ, सफाई के लिए ऐसा दीजिए कि जैसे खाना जो यहाँ बनता है वहाँ पे जो साफ सफाई होना चाहिए, खाने का बर्तन भी बिल्कुल साफ बिल्कुल स्वस्थ हो, क्योंकि जो खाना का वो साफ सफाई रहेगा तो वो पहली बार तो बीमारी का वहाँ तो छिकारा नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ स्वच्छ है और वहाँ पे हर एक देवी देवता भी लक्ष्मी का भी निवास हर पाल भी आते हैं, उसका भोग भी लगाते हैं, और जो जो है नहीं जो वहाँ स्वस्थ तो वहाँ पे देवी देवता भी वहाँ पे थोड़ा आने के लिए वो इनकार होते हैं, क्योंकि यहाँ जो साफ सफाई वहाँ वालों सब कुछ है और फिर बीमारी का भी डर भी नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और भोग हम भगवान को लगाते हैं। एक बात और भी कही जाती है तिवारी जी कि या तो इंसान को झूठ मारता है या फिर झूठ मारता है, झूठ यानी कि झूठा, किसी को झूठा नहीं खिलाना चाहिए और अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा करने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: जी जी, एक चीज है, आदमी तो चप्पल पहन के खाना बनाते हैं, तो चप्पल पहन के भगवान को भोग वो जो स्वीकार नहीं होता है।
0: जी देखिए तिवारी जी, पुराने जमाने में या अभी भी कह लीजिए कि गांव में अभी भी ये रिवायत है कि रसोई घर में जूता चप्पल नहीं लेकर जाया जाता, क्योंकि उसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। और कई लोगों के घरों में तो हमने देखा है कि जो मंदिर है, छोटा सा एक मंदिर रसोई घर में रहता है। अब देखिए जहां भगवान निवास करते हैं, जिस जगह पर भगवान का वास है, वहां पर हम कैसे चप्पल या जूता लेकर जा सकते हैं और वहां हम कैसे जूठा इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: कभी नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि भगवान देखते हैं किसी को जूठा खिलाना भी नहीं चाहिए और कोई किसी का जूठा खाना भी नहीं चाहिए।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी बात करने के लिए आपका।
1: ठीक है, नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी।

पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।

0: मोहब्बत की।
1: गजल जो है हमारी जो शायरी है जिंदगी की बातें हैं। जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, जब तक जिंदगी है तब तक गजल।
2: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़। सोशल मीडिया पर हेलो चंडीगढ़ 107.2 MHZ पेज पर भी हमें एक संदेश प्राप्त हुआ है। अशोक ग्रोवर जी लिखते हैं, विश्व खाद्य दिवस हमें सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व की याद दिलाता है। भोजन बनाते और खाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाथ धोकर भोजन करें, ताज़ा और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें तथा बासी भोजन से बचें। स्वच्छ भोजन अपनाकर हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने हमसे किए साझे बहुत ही विस्तृत रूप में अपने विचार और बात की खान पान पर, खान पान के साफ सफाई पर, रख रखाव पर और मिलावट पर भी। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। आइए अब आपको सुनवाते हैं चलते चलते ये गीत।
4: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: क्यों क्यों
1: आज नहीं कल।
2: श्रोताओं, हमने आपसे बात की जल्दी वल्दी और आज का विषय था भोजन बनाने और खाने में स्वच्छता अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर लेती है कार्यक्रम में आपसे विदा। नमस्कार।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष

0: श्रृंखला यादों का कारवां, यादों का कारवां, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के पांचवें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा का वो एपिसोड जिसमें हमने आपकी मुलाकात जाने माने गजल गायक चंदन दास से करवाई थी। तो लीजिए सुनिए अजीम गजल फनकार चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
0: दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हम उस शख्सियत को आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी मंद मुस्कान और मधुर आवाज के साथ साथ गजल ही जिनकी जिंदगी है। जी हाँ, हमारे साथ जिंदगी नामा में हैं गजल की दुनिया का एक बेहद खूबसूरत सितारा, गजल गायकी में एक नुमाया नाम चंदन दास।

अपनी मधुर आवाज और खास अंदाज से गजल गायकी में अपना खास मकाम हासिल किया, जिनकी मखमली आवाज के लाखों मुरीद हैं। इन्होंने अपने खास अंदाज से गजल गायकी को दिए नए मायने।

0: दोस्तों, चंदन दास का जन्म 12 मार्च सन 1956 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। मौसिकी के सफर का आगाज हुआ उस्ताद मूसा खान से शुरुआती तालीम के साथ। फिर दिल्ली की मशहूर हस्ती पंडित मणि प्रसाद से इन्होंने आगे की तालीम हासिल की। मेहनत और किस्मत तब रंग लाई जब मुंबई की एक संगीत कंपनी ने इनकी गजलों का एक एल्बम रिलीज किया और उसके बाद ये सितारा गजल की दुनिया में ऐसा चमका कि आज तक अपनी चमक से गजल की दुनिया को रोशन कर रहा है। चंदन दास जी का जिंदगी नामा सुनते हैं उन्हीं की जबानी। चंदन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: शुक्रिया जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, थैंक यू।
0: जिस तरह से आपने अपनी गजलों के जरिए सुनने वालों को मोहब्बत की शुरुआत करनी सिखाई, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी परवरिश कहाँ हुई और गजल के सफर का आगाज कैसे हुआ।
1: मैं तो हूँ बंगाल का, और बंगाल में हमारे फादर जो थे वो बिजनेस कारोबार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम ये म्यूजिक लाइन में आए, लेकिन मुझे संघर्ष करना पड़ा और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ के फिर मैं, जो हमारे फादर के बंगाल में रहता था, फिर मैं वहाँ से पटना आ गया। पटना में था मैं, पटना से शुरू हुआ मेरा एक्चुअल करियर। रेडियो में ऑडिशन दिया और रेडियो के अलावा कुछ था ही नहीं, और घर में तो ऐसे हमारे कल्चर थे ही, वहाँ पे हमारी बहन गाती थी, लेकिन इसको प्रोफेशन बनाना ये उनको गवारा नहीं था, तो इसलिए फिर मुझे वहाँ से आना पड़ा और पटना से मेरा ये स्ट्रगल शुरू।
0: जिस तरह से आपने बताया कि गजल गाने के

0: आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, आपने विपरीत हालातों में गायकी की शुरुआत की, तो किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा, आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: एक तो हमको कहाँ जाएंगे, हमको रहने की कोई जगह नहीं थी। हमको फिर मेरे फादर के एक दोस्त थे वहाँ पे पटना में, मैं उनके घर में ही रहता था, और वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। थोड़ा सा रेडियो में प्रोग्राम किया, और बाकी जो है हम छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे, और बहुत ही धीरे धीरे धीरे धीरे वहाँ पे, और रियाज भी हमने करना शुरू किया वहाँ, और एक रेडियो में आना जाना था तो वहाँ पे रेडियो प्रोग्राम कैजुअल करते थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक सज्जन मुझे मिला, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे दिल्ली में कुछ लोग जानते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिल्ली में हमारे साथ चले। तो मैं उनके साथ दिल्ली आ गया, और दिल्ली में फिर उनका अपना जो क्राउड था वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया और मेरा प्रोग्राम रखा, और इस तरह फिर मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगा कि मुझे दिल्ली में रहना चाहिए तरक्की के लिए। तो मैं दिल्ली में था, और मैं वहाँ पंडित मणि प्रसाद जी से मैंने बाकायदा क्लासिकल का तालीम शुरू हो गया।
0: जी, दिल्ली से आपकी तालीम शुरू हुई, आपने क्लासिकल सीखा। चंदनदास जी, आज बहुत से ऐसे फनकार हैं जो रातों रात स्टार बनने के सपने देखते हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या गजल गायकी सीख के एक व्यक्ति इस मकाम तक पहुंच सकता है, या फिर गायकी खुदा की दी हुई नेमत है?
1: सीखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें हैं, लग भी है और साथ साथ आपका जो अपना एवरीडे का जो रियाज है वो भी जरूरी है। रियाज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अच्छे गुरु हों, उससे तालीम होगी, तो आपको म्यूजिक के बारे में जानकारी आपको चाहिए भी, आप क्या गा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह धीरे धीरे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। मतलब अगर रातों रात चाहें कि स्टार बन जाए, वो ये म्यूजिक में नहीं होने वाला है। म्यूजिक बहुत टाइम चाहता है, और उसके लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह का इबादत है ये, जिन्होंने किया है उनको फिर इबादत का फल मिलता है, और नहीं तो क्या होता है बीच में फिर वो कट जाता है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। जितने आसान लोग समझते हैं कि बस दो चार गाने याद कर लो और गा लो हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बाकायदा डिवोट होना चाहिए, पूरा मन से होना चाहिए कि उसमें कितना सिंसियर हैं आप, उसके हिसाब से फिर आपका ये चीज आगे बढ़ती है।
0: जी चंदनदास जी, आपकी मखमली आवाज के लाखों मुरीद इस समय ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो आपकी गायकी के, आपकी गाई गजलों के दीवाने हैं, तो यकीनन वो इस समय आपकी पसंद की, आपकी ही गाई हुई गजल सुनना चाहेंगे, तो कौन सी गजल होगी वो?
1: तो मेरी बहुत फेवरेट गजल है, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। ये लिखा हुआ अजीम मलिक की है, काफी लोग पसंद करते हैं इसको, मैं हमेशा गाता हूँ।
0: जी, बहुत ही मकबूल गजल है ये, आइए सुनते हैं आपकी गाई ये गजल।

0: दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम आप FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गजल गायकी के अजीम फनकार जनाब चंदन दास। चंदन दास जी, गजल का चुनाव कैसे करते हैं?
1: ये मैं चुनाव ऐसे करता हूँ कि शायर होते हैं, शायर आते हैं अपने पास गजल को लेके और गजल को मैं पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ कि गजल का टेम्परामेंट क्या है, सैड है या रोमांटिक है या किस तरह की गजल है, उसी हिसाब से हमको इसको राग को चुनना पड़ता है और उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कंपोजिशन करने के।
0: कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं गजल को चुनते वक्त, ताकि वो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन तो बने ही, उनको कुछ सीखने को भी मिले?
1: क्या है, देखिए, लोगों के लिए हम कुछ नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो भी मेरा दुख है, जो भी मेरा सुख है, वो अपने लिए है, उसी को मैं जाहिर अपने म्यूजिक में करता हूँ। और जब खुद

0: अच्छा लगता है तो दूसरों को भी उनकी अपनी दर्द जो है वो सुन के उसको उनको याद आ जाता है कि कितना अच्छा गा रहा है। लेकिन वो दुख उनका नहीं होता है, उनकी उनका अपना दुख होता है, लेकिन मेरा अपना दुख है उसमें जो मैंने जो फीलिंग हमने डाला है, और फीलिंग अपने हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले की देन है। वो जब तक आप प्रयास करोगे, कुछ भी करोगे, जब तक ऊपर वाले की देन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो है पूरी अच्छी तरह से जो है गजल समझना चाहिए और समझ के जो है उसमें पूरे डूब के गाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लेखक होता है वो अपने मन की भावनाएं कलम के जरिए कागज पर उतारता है और उन भावनाओं में जान डालकर गायक श्रोताओं के सामने पेश करता है। इस तरह से मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। ये गजल गाने का कैसे सबब बना, कहां से आपके पास पहुंची?
0: जब टी सीरीज में हमने काम किया तो गुलशन जी ने कहा कि आप इधर आइए और हमारे साथ काम कीजिए टी सीरीज में। तो उन्होंने ही फिर इंट्रोड्यूस कराया था आपको हमको ये अज़ीम मलिक से कि ये शायर हैं, आप ये लिखते हैं अच्छे, इनका आप देख लीजिए कैसी। तो एक कंपोज़र आए

0: गजल गाने का कैसे सबब बना, कहां से आपके पास पहुंची?
1: ये अपनी सीरीज में हमने काम किया तो गुलशन जी ने कहा कि आप इधर आइए और हमारे साथ काम कीजिए टी सीरीज में, तो उन्होंने ही फिर इंट्रोड्यूस कराया था आपको हमको याजिम मलिक से कि ये शायर हैं, आप ये लिखते हैं अच्छे, तो इनका आप देख लीजिए कैसी है। तो एक कंपोज़र आए गनी अली करके, उनका कंपोज था, उन्होंने मुझे सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला इसको गाऊंगा मैं, और मैंने गाया।
0: जी चंदन दास जी, आपने बताया कि गजल गाने के लिए आपको अपना घर तक छोड़ना पड़ा क्योंकि आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आप गजल गायकी को अपना प्रोफेशन बनाएं, वो चाहते थे कि आप भी उन्हीं की तरह बिजनेस करें। तो जैसे जैसे आपकी मकबूलियत बढ़ी, आपका नाम हुआ, तो तब आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
1: पिताजी के बहुत बाद में रिएक्शन आया, जब देखा उन्होंने मैं दूरदर्शन में गा रहा था। उस टाइम पे सिर्फ दूरदर्शन ही था और कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे पहले को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो बहुत नाराज थे वो मुझसे कि बोला भी नहीं और घर से चला गया और इस तरह। फिर दूसरे लोगों ने जब बताया कि भाई तुम्हारे बेटे का जो प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे, तो उनको इच्छा हुई, भाई देखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने देखा, प्रोग्राम देखा, फिर उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि कहाँ हो तुम, कैसे हो। तो फिर उनको बुला लिया हमने और फिर मुलाकात हुई उनसे, और जो भी शिकायत जो भी थे वो सब दूर हो गए। उसके बाद जब देखा कि भाई अब तो सिर्फ यही काम करेगा ये और कुछ और दूसरा तो करेगा नहीं, तो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर
0: आपने फिल्मों में बहुत कम गाया है, क्या कारण रहे कि आपने फिल्मों में इतना कम गाया?
1: मैं दो फिल्मों में गाया है, जान लड़ा देंगे और हैंड्स अप में उषा खन्ना के म्यूजिक में गाया। बाकी तो मैं प्राइवेट एल्बम ही ज्यादा मेरा है, क्योंकि गजल में इतना ज्यादा मैं इन्वॉल्व था और गजल से मेरा प्यार है, मुझे अच्छा लगता है गजल गाना, गजल रिकॉर्ड करना, गजल लोगों के सामने पेश करना, क्योंकि मैं मेहदी हसन खान साहब से बहुत मुतासिर हूँ और उनको ही मैं सुन सुन के ये गजल की तरफ आया। पहले रेडियो में सुना करता था, फिर जब वो इंडिया में आए तो उसके बाद फिर तो बस उन्हीं को ही गाता था मैं। फिर 82 में मेरा एल्बम आया इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास के नाम से, जिसमें तलत अजीज साहब ने मेरा हेल्प की, गजल सिंगर बॉम्बे में उन्होंने बुलाया मुझे, और फिर 10 साल तक मैंने म्यूजिक इंडिया के साथ काम किया।
0: जी आपकी जो गजलों की पहली एल्बम रिलीज हुई, कैसा रिस्पांस रहा था सुनने वालों का?
1: बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस टाइम पे एक नया दौर चला था गजलों का 80s में, सब लोग आ रहे थे उस टाइम पे, नए नए कंपनीज नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, प्लेटफॉर्म मिला उन लोगों को सबको, और वो एल्बम मेरा बहुत अच्छा गया। 8 गजलों का था एल्बम इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास के नाम से, उसको गोल्ड डिस्क भी मिला म्यूजिक इंडिया की तरफ से, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेल था उसका उस टाइम पे, एलपी का ज़माना था, कैसेट का ज़माना था, तो बहुत अच्छा रहा रिस्पांस। फिर मैं धीरे धीरे फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं उनके साथ 10 साल का मैंने एग्रीमेंट किया और हर साल मेरा एल्बम आता था अलग अलग नामों से, फिर लोगों में पहुंचता था, लोग हमको बुलाते थे, लोग इनवाइट करते थे, फिर हमारा ये शोज वगैरह होना शुरू हुआ जगह जगह जगह जगह, तो इसी तरह आगे चलता गया, अपना मंजिल आगे बढ़ता गया।
0: जी जब आपने गजल गायकी का आगाज किया तब बहुत से नामी गजल गायक थे, जैसे जगजीत सिंह, तलत अजीज, हरिहरन, और भी ऐसे कई फनकार थे जो पहले से ही एस्टेब्लिश हो चुके थे। गजल गायकी की एक गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी में सवार होकर आपको अपना सफर शुरू करना था, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इन सब के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना एक खास मकाम बनाने के लिए?
1: संघर्ष तो तभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है, जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होता है ना होनी चाहिए, आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हम लोग 6 आर्टिस्ट थे, उसमें 6 आर्टिस्ट को उन्होंने प्रमोट किया म्यूजिक इंडिया ने, और जगह जगह जगह जगह उन्होंने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि हमारा एक अलग से प्रोफेशन निकल गया कि हम लोग शो करते थे, शो में हम लोग जैसे कहीं भी गए शो किया, लोग सुनते थे, प्राइवेट प्रोग्राम सुनते थे, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आम लोगों के बीच प्रोग्राम होना शुरू हुआ, और फिर इस तरह ये चीज सिलसिला आगे बढ़ता गया।
0: आपने देश विदेश में बहुत शो किए, तो कोई ऐसी याद जो आप कभी नहीं भूल पाते हैं, जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, जो हमेशा आपके जहन में रहती है?
1: याद तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि एक बारी वहाँ पे लंदन में प्रोग्राम हुआ था, हम गए थे पहली बार, और फ्लाइट में जो है कोई मुझे मिला और कहने लगा कि आप चंदन दास जी हैं,

0: तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत घबराए, वो तो उन्होंने दूरदर्शन में देखा था शायद मुझे, और वो बहुत फैन थे मेरे, सारी गजलें उनको काफ़ी मुंह-ज़ुबानी याद था। और फिर क्या हुआ कि वो मुझे देखते रहे, मैं बैठा रहा फ्लाइट में, और धीरे धीरे धीरे धीरे मैंने देखा कि वो बहुत बेचैन हो गए। वो तो आए वो मेरे पास, मैं बोला सर आप मेरे को बताइए कि आप वही हैं आपने। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उनको बताया कि मैं ही हूँ जी, सॉरी। तो बोले देखिए मुझे पता था, मैंने देखा था दूरदर्शन में, तो मैं इतना फ़ैन हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपका ये कैसेट है, ये कैसेट मेरे पास, ये है। फिर वो लंदन में मेरे प्रोग्राम में भी वो आए, और आके जो वो सुन रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस हिसाब से वो सुन रहे थे, आम लोगों की तरह नहीं सुन रहे थे, क्योंकि पता चला कि वो खुद भी गज़ल गाते हैं, तो उनका सुनने का अंदाज अलग था। तो मुझे ये बहुत कभी कभी बहुत याद आता है कि मुझे उसको बोल देना चाहिए था।
1: जी बिल्कुल, और वो आपके फैन मन में यही सोच रहे होंगे कि न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
0: ये डॉक्टर बशीर बदर साहब की है गजल, और ये गजल ऐसी है कि जब मैंने दूरदर्शन में गाया और दूरदर्शन से जब लोगों ने देखा इसको, लोगों ने बहुत पसंद की, और कहीं भी मैं जाता हूँ तो ये गजल मुझे एक बार नहीं दो बार गाना पड़ता है। लोगों की फरमाइश होती है कि आपने ये नहीं गाया तो आपने ये प्रोग्राम तो आपको जाने ही नहीं देंगे हम।
1: चंदन दास जी, आज हम भी आपको ये गजल गाए बगैर बिल्कुल यहाँ से जाने नहीं देंगे।
0: ये गजल बहुत फेवरेट है मेरी, बहुत फेवरेट गजल है।

0: दोस्तों जिंदगी नामा प्रोग्राम आप FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गजल गायकी के अजीम फनकार जनाब चंदन दास। कितना रियाज करते हैं आप गजल गाने के लिए?
1: मैं सारा दिन ही रियाज होता है। रियाज का मतलब यह ना कि कोई गले से रियाज करना है, सुनना भी बहुत बड़ा रियाज होता है, गाना भी है और सुनना भी है, तो चलता ही रहता है सारा दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, या तो हम गा रहे हैं खुद या तो हम किसी को सुन रहे हैं, तो सुनने से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है।
0: चंदन दास जी, आज बहुत से हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, खास तौर पर हमारी यंग जनरेशन, उनको गजल गायकी के क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे गजल गायकी के बारे में?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।
0: बहुत खूब चंदन दास जी, आप जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना पसंद करते हैं और हमें चाहते हैं, बस आप हमारे लिए हमेशा दुआ करें, हम आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे।
0: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जाने माने गजल गायक चंदन दास के गजल गायकी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों का कारवां। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी हेल्पलाइन के अंतर्गत TRAI के सीनियर रिसर्च ऑफिसर संजीव मीणा से अश्विनी कुमार की भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार और मेरे साथ आज हैं संजीव मीणा। ITS हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण TRAI के जयपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हैं ये। और TRAI के बारे में इनसे हम बहुत सी चर्चा आज करेंगे, जानेंगे कि TRAI का क्या कार्य रहता है, क्या ये काम करती है, क्योंकि सभी लोग निर्भर हैं आजकल मोबाइल फोन्स पर, डाटा

0: पर, या फिर आगे आगे आपको थोड़ी बातचीत में पता चलेगा कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर भी ट्राई का कुछ ना कुछ नियंत्रण रहता है, कुछ ना कुछ नियामक के तौर पर वो अपना रोल अदा करती है। संजीव मीणा, ITS सीनियर रिसर्च ऑफिसर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू अश्विनी जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ट्राई क्यों बनाया गया?
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया था, और 1994 में प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने सर्विसेज, इससे पहले कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता था, तो गवर्नमेंट के लिए यह आवश्यक हो गया था कि इस सेक्टर में एक फेयर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, कंज्यूमर्स के हितों को भी प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ सभी प्लेयर्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। इसके तहत भारतीय संसद ने 1997 में एक एक्ट के माध्यम से ट्राई की स्थापना की, और इसी कड़ी में आगे चलकर 2004 में ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज को भी ट्राई ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और अभी ट्राई टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग दोनों सेक्टर्स को रेगुलेट करता है।
0: जी, ट्राई का मिशन क्या है मीणा साहब?
1: ट्राई का बेसिकली जैसे सभी प्लेयर्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, जहां पर कि वो सभी अपना हेल्दी एनवायरनमेंट में, हेल्दी कंपटीशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जा सके, क्योंकि यहां पर ट्राई एंश्योर करता है कि जो मार्केट प्राइसिंग है सर्विसेज की वो मार्केट ड्रिवन हो और किसी भी उपभोक्ताओं को एडिशनल चार्जेज ना किया जाए। तो यदि कहीं पर ट्राई को लगता है कि उपभोक्ताओं के हितों का हनन हो रहा है, तो ट्राई वहां पर अपना इंटरफेयर करके उसको रेगुलेट करता है।
0: जी जी जी, और जो ट्राई की नियामक जिम्मेदारियां हैं, रेगुलेटरी जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या क्या हैं?
1: ट्राई टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में मेनली चार जो इनके फंक्शन है उनको रेगुलेट करता है। इनमें सबसे पहले इंटरकनेक्शन है। इंटरकनेक्शन के माध्यम से कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स हैं, आपस में उनके बीच में किस तरह से कनेक्टिविटी रहे, ये ट्राई एंश्योर करता है। ट्राई की गाइडलाइंस के तहत ये होता है। इसके साथ ही साथ ट्राई टैरिफ की भी निगरानी रखता है, यदि कहीं पर उपभोक्ताओं के हित इफेक्ट हो रहे हैं तो ट्राई वहां हस्तक्षेप करता है, और साथ ही साथ ट्राई सेवा की गुणवत्ता को भी एंश्योर करता है, और इसके अलावा पॉलिसी मैटर्स में भी सरकार को अपनी रिकमेंडेशन समय समय पर देता है।
0: जी जी, जैसे कि आपका जो ऑफिस है वो जयपुर में है, तो इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं?
1: ट्राई रीजनल ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में जैसे जयपुर में स्थित है तो राजस्थान स्टेट है, गुजरात स्टेट है, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब स्टेट, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन दीव और चंडीगढ़ भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और ट्राई के इसके अलावा पांच और क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल में स्थित है।
0: जी जी जी, तो संजीव मीणा, जो मोबाइल सेवा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको अच्छा बनाने में या उपभोक्ताओं के लिए उसे बेहतर तरह से पहुंचाने में ट्राई किस तरह से सहयोग करता है?
1: ट्राई उपभोक्ताओं के लिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए समय समय पर ड्राइव टेस्ट के माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो मिनिमम क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स ट्राई ने जो डिफाइन किए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको फॉलो करवाया जाए। इसके लिए ट्राई इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट अपनी तरफ से करवाता है, और साथ ही साथ ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित करता है कि वो भी अपना ड्राइव टेस्ट करें, और उसकी रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट पर भी पब्लिश होती है और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पब्लिक के पास पहुंचती है। इसके अलावा ट्राई ने ये भी अभी इंश्योर किया है कि जो कवरेज मैप है वो भी ट्राई की वेबसाइट, साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल रहे। और ट्राई एक PMR ऑडिट, जिसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट की ऑडिट भी करता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उस रिपोर्ट को एक काउंटर चेक करने के लिए ट्राई अपनी एम्पैनल्ड इंडिपेंडेंट एजेंसीज के माध्यम से इसका ऑडिट करवाता है, और यदि यहां पर कोई डिफॉल्ट मिलता है, कोई वायोलेशन मिलता है, तो ट्राई उस पर फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव भी इम्पोज करता है।
0: यानी कि जैसे कॉल ड्रॉपिंग की कई बार समस्या होती है या कोई भी इस तरह की बात हो तो ट्राई को संपर्क किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ट्राई इसको अपने लेवल पर भी इंश्योर करता है, और ट्राई ने अभी हाल ही के जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया है इसके माध्यम से इसको काफी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन बनाया। पहले कॉल ड्रॉप रेट जो लोअर थी, अभी उसका बेंचमार्क काफी हाई किया है, तो इससे भी काफी कॉल ड्रॉप की समस्याओं से समाधान मिला है कंज्यूमर्स को।
0: जी जी जी, तो ये कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता हैं उन्हें पता चल रहा है कि ट्राई किस तरह से कार्य करता है और उनके अपने अधिकार क्या हैं, और जैसे सभी श्रोताओं को एक समस्या रहती है कि अनचाहे जो कॉल्स आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और ये गीत आपके साथ हम भी सुनते हैं, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद इस विशेष कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ से। आज हमारे मेहमान हैं संजीव मीणा, आईटीएस, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में ये कार्यरत हैं। और इनसे हम ट्राई पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो एक जो दूर संचार उपभोक्ता है, सभी के पास मोबाइल है आजकल, तो उन्हें कभी कभार टेली मार्केटिंग की कॉल्स या अनचाहे कॉल्स आते रहते हैं। लगातार 140 से बहुत सारी कॉल्स आती हैं। कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं, मैं अपना अनुभव भी आपसे बताना चाहूंगा, जो ब्लॉक करने के बावजूद भी आते रहते हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कभी कहीं किसी कार्य में मसरूफ हैं, उस दौरान भी लगातार वो कॉल आते रहते हैं। तो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए?
1: ये आपने सही कहा कि ये जो समस्या है वो सभी के लिए काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि हम कहीं भी अपनी मीटिंग में हो या फिर कोई स्टूडेंट है वो क्लासरूम में है या हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो ये कॉल कभी भी आपका कोई टाइम नहीं देखते और आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको भी वायोलेट करते हैं। तो इसके लिए ट्राई ने एक DND ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और ट्राई ने एक रिसेंट इनिशिएटिव के माध्यम से ये भी इंश्योर किया कि कोई भी SMS आपको मिलता है तो वो जो रजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनी के यदि कोई SMS है तो उसमें एक सफिक्स होता है जिसमें आपको SMS हेडर के बाद में देखने को मिलता होगा P या फिर S या फिर T या G। तो P है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये SMS प्रमोशन से रिलेटेड है, T है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, और S है तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये सर्विसेज से रिलेटेड है।
0: जी जी जी।
1: और कई SMS ऐसे होते हैं जिनमें G लिखा हुआ है, तो ये आपको समझना रहेगा कि ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसीज हैं, उनके यहाँ से ये SMS आपको मिलता है। साथ ही साथ ट्राई ने ये भी अभी नंबर सीरीज इश्यू की है जिसमें 1600 है, इससे बैंक और इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो आपको अपना कॉल कर सकती हैं सर्विसेज से रिलेटेड। और 140 सीरीज है उससे प्रमोशनल रिलेटेड कॉल्स आपको।
0: जी जी जी। तो इसको आप कह रहे हैं कि जो DND ऐप है उसके द्वारा आप रोक सकते हैं कोई भी उपभोक्ता।
1: हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा 140 और 160 ये रजिस्टर्ड टेली मार्केटर के थ्रू ही आपको ये कॉल आता है, लेकिन आपने यदि यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है फिर भी आप ये कॉल रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए DND ऐप काफी हेल्पफुल साबित रहेगा। इसके लिए मैं सभी आपके सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो DND ऐप डाउनलोड करें। और जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल से इस नंबर को ब्लॉक करने के बावजूद भी ये कॉल हमें रिसीव होती रहती है।
0: जी जी जी।
1: तो इस ऐप से आपको ये समस्या का समाधान मिल जाएगा कि जैसे आपने इस नंबर की कंप्लेंट बुक की और आपके अलावा यदि और भी लोगों ने इस नंबर की ऐप पर कंप्लेंट बुक की, तो ट्राई का जो रेगुलेशन है वो ये इंश्योर करता है कि उसकी टेलीकॉम सर्विसेज जो पहले उसको वार्निंग देने के बाद में उसको ब्लॉक किया जाए। अब आप यदि अपने नंबर पर ही उसको ब्लॉक करते हैं तो हो सकता है आपको ही वो नंबर ना दोबारा कॉल करे, लेकिन वो किसी और को फिर स्पैम कॉल करेगा। तो इससे हमें राहत लेने के लिए ये जरूरी है कि हम उसको कंप्लेंट ट्राई DND ऐप के माध्यम से करें।
0: जी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपने जो DND ऐप के बारे में बताया। तो इससे क्या स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है वो 160 यानी कि अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या फिर बैंकिंग सेक्टर से तो कॉल चाहता है परंतु 140 से वो कॉल नहीं चाहता है, तो वो क्या अलग अलग तरह से भी उन्हें ब्लॉक कर सकता है इस ऐप के माध्यम से?
1: ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें ऐप में ये फैसिलिटी भी है कि आप इसमें दिन भी चयन कर सकते हैं कि आपको इसी दिन ये SMS या कॉल चाहिए। आप इसमें टाइम स्लॉट भी चयन कर सकते हैं कि आपको इतने बजे ये कॉल चाहिए। साथ ही साथ आप इसमें अपना सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर से ही SMS चाहिए या फिर कॉल चाहिए, बाकी सेक्टर को आप ब्लॉक करना चाहें तो आप सेक्टर स्पेसिफिक इसमें ऑप्शन है वो आप ऑप्ट करके उसको किसी

0: भी सेक्टर को ब्लॉक कर सकते हैं और किसी भी सेक्टर को आप अपनी सर्विसेज एक्टिव रख सकते हैं।
1: जी, तो ये जो कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे श्रोता वो जान ही गए होंगे कि डीएनडी ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्राई द्वारा चलाया जाता है, और आप जो परेशान होते रहते हैं चलते फिरते कि हमें कॉल आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्हें आप डीएनडी ऐप के माध्यम से अलग अलग तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर उल्लंघन करता है कोई उसके बावजूद भी, तो उस पर क्या कार्यवाही करता है ट्राई?
0: ट्राई सभी टेली मार्केटर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एंश्योर करता है कि वो इस पर एक्शन ले। एक निश्चित जो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर यदि कंप्लेंट्स किसी नंबर के अगेंस्ट में रिसीव होती है तो ट्राई उस पर फाइनेंशियल डिस इंसेंटिव इम्पोज करता है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। यदि आपका कोई एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की आप सर्विस लेते हैं और उस नंबर की कंप्लेंट करते हैं तो वो नंबर की कंप्लेंट बाकी सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी पहुंच जाएगी। तो ये नहीं है कि वो सेम नंबर किसी दूसरी सर्विस प्रोवाइडर का वो यूज नहीं कर पाएगा। तो ट्राई ने इसको स्ट्रिक्ट और कंप्लायंस के लिए अभी फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव को भी इंक्रीज किया है।
1: जी जी जी, तो जैसे अभी आपने इतनी सारी हमें बातें बताई, अन्यथा और कौन कौन से तरीकों से ट्राई लोगों को शिक्षित करता है, उपभोक्ताओं को शिक्षित करता है?
0: ट्राई के जो क्षेत्रीय ऑफिस हैं वो सभी के लिए एक ये मैंडेट है कि वो अपने जो उनका ज्यूरिडिक्शन है वहां जाकर के कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और वहां पर कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनका फीडबैक लें। साथ ही साथ क्योंकि ट्राई हर जगह नहीं पहुंच पाता तो ट्राई ने अपने कुछ एनजीओज को एम्पैनल किया है जिनको हम कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के नाम से जानते हैं। वो भी ट्राई के बिहाफ पर कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह पर आयोजित करवाते हैं और कंज्यूमर से इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा ट्राई ने यह भी एंश्योर किया है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्टेट है उसके 25 डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और कंज्यूमर्स को एजुकेट करें।
1: जी, और जो शिकायतें आती हैं कंज्यूमर्स की, किसी भी प्रकार की शिकायतें होती हैं, उनका निपटारा किस प्रकार से किया जाता है ट्राई द्वारा?
0: ट्राई एज सच डायरेक्टली कंप्लेंट्स को डील नहीं करता है, लेकिन ट्राई ने अपने रेगुलेशंस के माध्यम से ये इंश्योर किया है कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास में टू टीयर का एक सिस्टम होना चाहिए कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए। यदि कोई भी एग्रीव्ड कस्टमर है तो अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है, और जैसे कि 198 नंबर है सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद में एक डॉकेट नंबर रिसीव होता है। डॉकेट नंबर के बाद में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उस कंप्लेंट को रिड्रेस करता है और एक SMS उपभोक्ता को भेजता है कि आपकी कंप्लेंट का रिड्रेसल कर दिया गया है। इसके बावजूद यदि उपभोक्ता सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एपीलेट अथॉरिटी में अपनी अपील कर सकता है, जिसका निवारण टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 39 डेज के अंदर करना होता है।
1: जी, और मीना साहब, ये जो टीवी और डीटीएच है, वैसे तो इसमें अब सर्विसेज में काफी बदलाव आ गया है, बहुत सारे लोग अब वाईफाई से जो अपना टीवी चलाते हैं, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे डीटीएच अभी भी है और टीवी उसके द्वारा वो देखते हैं, या फिर और भी प्रसारण सेवाएं हैं, उसमें ट्राई का क्या रोल है?
0: ट्राई जैसे कि डीटीएच सेक्टर, FM रेडियो, AM रेडियो, रेडियो सेक्टर के अलावा ब्रॉडकास्टिंग केबल सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ट्राई इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस एंश्योर करता है। ये बात सही है कि अभी केबल ऑपरेटर्स की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है, लेकिन इसको जो भी सर्विसेज मिल रही है उपभोक्ताओं को वो क्वालिटी एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड जो ट्राई का है वो फॉलो किया जा सके, इसके लिए ट्राई ने सभी जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे क्वार्टरली भी रिपोर्ट लेते हैं और मंथली भी रिपोर्ट लेते हैं, और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका ऑडिट भी करवाते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज के माध्यम से। और अभी रिसेंटली ट्राई ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए जो छोटे ऑपरेटर हैं उनके लिए ऑडिट को ऑप्शनल बना दिया है।
1: जी जी जी, और एक डिजिटल कनेक्टिविटी की जो रेटिंग्स हैं, क्योंकि सभी को आजकल डाटा चाहिए और स्पीड भी चाहिए, तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग्स क्या होती हैं?
0: जैसे कि अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर इंटरव्यू कर रहे हैं और हम बाहर देखते हैं तो हमारा मोबाइल नेटवर्क ठीक था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, और कुछ स्टडीज के अनुसार यह है कि 70-80% जो डेटा है वो हम इन हाउस या इन बिल्डिंग्स में कंज्यूम करते हैं। तो उस डेटा का कंज्यूमशन क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर है, ट्राई अपने ड्राइव टेस्ट के माध्यम से आउटर एरियाज में क्वालिटी ऑफ सर्विस एंश्योर करता है, क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे सबके लिए बिजली पानी की तरह एक एसेंशियल नीड बन गई है, तो उसको एंश्योर करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी का असेसमेंट के लिए ट्राई एक डिजिटल रेटिंग फ्रेमवर्क लेकर के आया है। इस रेटिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से किसी भी तरह की जैसे बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल है, मॉल्स है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहां पर ट्राई एम्पैनल्ड डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसीज के माध्यम से इनकी रेटिंग की जाएगी, और इसके बाद उपभोक्ता या कंज्यूमर्स किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो वो देख सकते हैं, जैसे होटल में ये 5-star होटल है, 4-star होटल है, तो उसी तरह कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं कि ये 5-star है, 4-star है, और अपना वो एक डिसीजन ले सकते हैं उस बिल्डिंग।

0: जी। और डीसीए क्या होता है?
1: डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन, जैसे कि हम कई बार शॉपिंग करते हैं और अपना नंबर शॉपिंग स्टोर पर दे के आ जाते हैं और वहां से हमें एसएमएस आता रहता है और हम चाहते हैं कि अब एसएमएस हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वहां पर एक अपना एग्रीमेंट दे के हैं कि आप हमें एसएमएस करें, तो वो शॉपर से या शॉपिंग सेंटर वाले या फिर कहीं और भी जगह मार्केटिंग वाले आपको उसी बेसिस पर एसएमएस करते रहते हैं। और ऐसे नंबर हैं वो डीएनडी ऐप से भी ब्लॉक नहीं होंगे, तो इसके लिए ट्राई ने डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन को भी पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप अपनी जो भी कंसेंट आपने कहीं पर दी हुई है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंकिंग सेक्टर में या फिर शॉपिंग सेक्टर में अपना नंबर दिया है तो आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो पूरे लिस्ट दिख जाएगी, तो वहां पर आप डिसलेक्ट भी कर सकते हैं कि अभी आपको उस तरह के एसएमएस नहीं चाहिए, तो डिजिटली इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल रहे।
0: तो इसके लिए किसी वेबसाइट पे जाना पड़ता है क्या?
1: ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। ट्राई ने 11 बैंकों के साथ में इसको ट्रायल मोड में अभी किया हुआ है, तो एक बार ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा ट्रायल में तब इसको पब्लिक के लिए लॉन्च करें
0: जी। और जो आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है साइबर फ्रॉड्स का, तो साइबर फ्रॉड्स को रोकने में कम करने में ट्राई किस तरह से सहायता करता है?
1: ट्राई एक तो जैसे स्पैम कॉल में और स्पैम एसएमएस जो आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि डीएनडीएफ के माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी जैसे आज की न्यूज में हम देख रहे थे किसी ने पासपोर्ट के लिए फेक लिंक आया उस पर क्लिक किया और 1 लाख रुपीज उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, तो कोई भी इस तरह का लिंक आए उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। और कोई भी अननोन नंबर या फिर आपको स्पैम कॉल है जहां से आपको लगता है कि ये सस्पेक्ट है, तो उसकी कंप्लेंट आपको ट्राई डीएनडीएफ पर करनी है। और यदि फ्रॉड से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको संचार साथी पर इसकी कंप्लेंट करनी है। और ट्राई ने अभी ये मैंडेट किया है कि आप किसी भी नंबर की कंप्लेंट करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको डीएनडी में रजिस्ट्रेशन करना है, आप कोई भी नंबर से आपको कॉल आता है तो आप विद इन 7 डेज उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ट्राई ने ये भी इंश्योर किया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस कंप्लेंट पर आपको 5 दिन के अंदर उसमें एक्शन लेंगे। और इसके अलावा ट्राई ने अभी फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव भी इंक्रीज किया है
0: जी। और एक संचार साथी के बारे में आपने बात की, संचार साथी ऐप को अभी बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया और बीच में एक भ्रांति जैसी भी थी कि इसे नहीं डाउनलोड किया जाना चाहिए, तो इसका क्या फायदा है और क्यों आवश्यक है ये?
1: संचार साथी पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट ऐप है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लॉन्च किया है। इसमें आपको कोई भी फ्रॉड कम्युनिकेशन आता है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और आप अपना कोई भी यदि मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आप अपना नंबर उसमें मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं, और मोबाइल आपका रिकवर हो जाता है तो उसके बाद उसको अनब्लॉक भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम कई बार मोबाइल सेकेंड हैंड परचेज करते हैं या कई ऐसे स्टोर से परचेज करते हैं जहां पर हमें डाउट होता है, तो वहां पर आप अपना IMEI नंबर का वेरिफिकेशन भी इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं कि ये मोबाइल जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा एक इसमें फीचर है कि आपके नाम पर कितने कनेक्शन इश्यू हो रखे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा कनेक्शन हो, मोबाइल नंबर हो जो आप यूज नहीं कर रहे और आपके नाम पर वो चल रहा है, तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं और उस नंबर को आप ब्लॉक करवा सकते हैं यहाँ से। और यदि कोई इस तरह का कॉल आपको आता है जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल है लेकिन आपको नंबर उसमें लोकल डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको भी आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 50 लाख से ज्यादा मोबाइल इसमें ब्लॉक अभी तक किए हैं संचार साथी पोर्टल के माध्यम से, और लगभग 30 लाख के अराउंड मोबाइल रिकवर ये किए जा चुके हैं।
0: जी जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी संख्या है और संचार साथी ऐप को अवश्य ही अपने मोबाइल में रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप अपना सिम कार्ड लेने जाते हैं, वहां पे उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ और नंबर भी इशू कर दिए जाते हैं जो कि काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं और आपके लिए भी जो उपभोक्ता है उसके लिए भी एक समस्या हो सकते हैं, चाहे वो लीगल समस्या हो चाहे किसी और प्रकार की समस्या हो। तो संचार साथी मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐप है जिसे डाउनलोड करके रखा जाना चाहिए, अपने नंबर्स देखते रहना चाहिए कि आपके परिवार या आपके लिए कितने नंबर्स कितने सिम कार्ड्स इशू हो चुके हैं। तो संजीव मीणा जी, और आप चलते चलते हमारे श्रोताओं के साथ ट्राई के बारे में कुछ साझा करना चाहते हो?
1: ट्राई के बारे में अभी एक और ट्राई का इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन एक जो पायलट प्रोजेक्ट ट्राई ने अभी लॉन्च किया है। हम क्या देखते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में कुछ इस तरह के ऐप होते हैं जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कॉल किस नाम से हमें रिसीव हो रही है जी। लेकिन ट्राई ने इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को रिकमेंड किया है कि जो नंबर से सिम कार्ड की सेल हुई है एक्चुअल नाम जो है वही डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए अभी हरियाणा स्टेट में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये सक्सेस रहेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको ऑल इंडिया लेवल पर भी लॉन्च कर पाएगा।
0: जी जी जी। तो संजीव मीणा, आईटीएस सीनियर रिसर्च ऑफिसर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई, जयपुर, क्षेत्रीय कार्य

0: जिले में आप कार्यरत हैं और आपने आज हमारे स्टूडियो में विजिट किया और साथ ही हमारे श्रोताओं के साथ ट्राई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। और सभी सुनने वालों को मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपना जो भी स्पैम कॉल या फ्रॉड कॉल है तो अनचाहे अनवांटेड लिंक है जो आपको सस्पेक्ट लगे तो उस पर आप क्लिक ना करें और अपना बचाव करें। और यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 या cybercrime.gov.in पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं।
0: जी जी जी, इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बाबा का।
2: अभी आप सुन रहे थे TRAI के ITS सीनियर रिसर्च ऑफिसर संजीव मीणा से अश्विनी कुमार की बातचीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
3: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
3: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
4: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए जरा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति

0: हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई। कार्यक्रम है यादों की महफिल।
3: पूजा नारायणिया स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर

0: 1-800-220-2462। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण की बोल है, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुना रहे हैं सुहाना सफर इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज है, युगल स्वर है। मौजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आरजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर.डी. बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों की महफिल ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे।

आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मंच है गीत प्रसारित किया जाएगा 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बात पहर 3:30 पर नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। आज इस कार्यक्रम में समाज सेविका राजपाल कौर मस्त से बातचीत सुनाई जाएगी। कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा प्रस्तुत की जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे झलकी सुनिए कुत्ते के पिल्ले। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आप

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 2 विभागों यानी नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में रखी 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जाँच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। सीबीआई ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली एनसीआर में 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और मेसर्स विपम कंसल्टेंट

0: एसपी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और आरोप है कि सरकारी अधिकारियों को इसके लिए अनुचित लाभ मिले हैं। नोएडा स्थित एक कंपनी मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में हेराफेरी की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से एक मामला हाथ में लेने और मूल रूप से आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज किए दो मामलों के बाद जाँच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद सीबीआई पहले ही पंचकुला की सीबीआई अदालत के समक्ष दो विभागों हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों की मामले में भूमिका का विवरण देते हुए प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक के साथ जमा किए गए सरकारी धन की धोखाधड़ी के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों मामलों की जांच सक्रिय रूप से जारी है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मार्च को आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि परिणामों में जिला अंबाला ने पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
1: 11,056 लोगों ने परीक्षा दी थी 15 मार्च के दिन और उनका अभी परिणाम आया है और 10,991 परीक्षार्थी सफल रहे हैं, यानी हमारा जो परीक्षा परिणाम है 99.41% रहा है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ इस बार उल्लास लर्नर्स का, वो भी सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए जो लोग परीक्षा के अंदर बैठे वो भी हमारे सबसे ज्यादा रहे और परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग भी जो है वो अंबाला में सर्वाधिक रहे।
0: उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
1: जो लोग कभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय नहीं जा पाए, 15 साल से ऊपर की उम्र के वो लोग 80 साल के भी होते हैं, ऐसे लोगों का पहले हम सर्वे करते हैं, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, परीक्षा परिणाम आता है, उसके बाद तीसरी कक्षा तक की शिक्षा का उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है।
0: पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, खेल विभाग पलवल के उप निदेशक राम मेहर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी बलविंदर सिंह बागा तो प्रदेशिक खबरां सुनो। भारतीय चोण कमिशन वालों की जा रही वोटर सूचियों की विशेष गहन सोध यानी कि SIR के मद्देनजर पंजाब में अज सवेरे 10 बजे तो सूबे के सारे 24,453 पोलिंग बूथों से विशेष कैंप शुरू हो गए हैं। पंजाब के मुख्य चोण अफसर अनंत मित्रा ने दसिया है कि यह एक रोजा विशेष कैंप प्री मैपिंग होर तेजी अंजाम देने लगाए जा रहे हैं। वोटर मैपिंग सुचजे ढंग नेपड़े चढ़ाने BLOs कैंप में शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। श्रीमती मित्रा ने सूबे के सारे वोटरों को इन्होंने कैंपों में सरगर्मी हिस्सा लेने की अपील की ताजो प्री SIR कवायद को सुचारू ढंग चलाया जा सके। सूबे भर के वोट केंद्रों से चल रही इस प्रक्रिया बारे एक बूथ पद्धर के अधिकारी ने जानकारी दिंदा दसिया।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संघर्ष फिल्म के गीत से, आवाज है सोनू निगम की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार जतिन ललित।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राज 3 फिल्म में केके को। गीतकार हैं संजय मासूम, संगीतकार जीत गांगुली।

0: आर पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: साइकिल पे तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा की। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया। और ये शोर

उनका गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी है। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानू जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

जहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं। हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर
1: पवन तर सोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल हैं हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

यहाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती है और मन की बातों को उनकी साथ सुर में पिरो रही है। जी हाँ, वो है

आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझी से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके।

0: फिल्म से, और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?
1: आपके सजन सावन में

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है।

अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहां तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता,

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयर टाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

और सबको गले ल

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा

0: देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श

0: शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का राजा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रूपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वही आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्व

0: भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। सहे लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत पर किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोले संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी ए नाम है ये चूल्हे ने दो नाजुक तुम हो।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और ये अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी की बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपकी उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए, हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म की इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

पंचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बीबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जी सुल्तानपुरी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सिंह।
3: जब सदा संग रहे

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है, पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मिका, बलविंदर मिका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मिका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर

0: इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं,
1: क्या
0: जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता

कार्यक्रम मंचा है गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी आसमा नाज अंसारी वसीम अकरम अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम अजीम वकार डब्ल्यू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवासी राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजनू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों की, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायण को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: हेलो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिया का नाम राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लचवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो, हमसे मिले।

0: जी बिल्कुल।
1: सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल मनवार। सत श्री अकाल।
1: हजूर ने मैनु याद किया ही है।
2: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
1: सौंपो जी सौंपो।
2: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
1: साड़ी मदद?
2: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
1: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान की तैयारी करता हूँ।
2: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
3: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
2: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
3: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
2: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु सैर करेंगे।
4: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
5: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बख्त हराम ज्यादा निकला।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
4: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
5: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
4: उफ दादी जान,
5: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
4: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
5: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
4: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
5: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
4: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
5: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
4: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
5: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
4: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
5: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
4: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
0: जो हुक्म आ लीजा। आलम पड़ा, गुलाम कादिर हाजिर है।
4: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
6: हुजूर, हुजूर, रहम।
4: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की

कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में, इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया, तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका

सर सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: में शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा।

किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो, मैं जाता हूँ। अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहनशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखिए क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफे लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए, ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो? इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो। इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा!

0: ऐसे भलाई कैसे हो सकता है कि ये लाज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ।

0: मंसूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आने लगी।

0: दी सर जी। इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है सरदार इंगले।
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

बना तो लेकिन ये दुर्दशा बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली। मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है। हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा।

इजाजत बख्शे। मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूँ। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होंठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये है हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी, इसी वक्त।
2: नहीं,
1: यह है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके।

अगरचे हम देख नहीं सकते मगर मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

चीज प्यार जिसको खुदा मानते हैं सब, खुश है तू पाते

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बंदो तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा।

0: वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसा मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग कि नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा, जब तक मैं घर जाऊंगा हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइन्स। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब व्हाटएवर। तो उस प्रकार का उन्होंने

0: साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ। ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर का कार उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां हाँ। गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये लिखा किसने है
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी
1: जी,
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होता

0: तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया। वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल ये नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली।
1: जी जी
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है। जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: ए, मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। ये मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुनिए, ऐ मेरे वतन के
0: लिए, जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन देशप्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया, आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे
0: जी।
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे। हम लोग खड़े। तो ये बात थी।

0: तो ऐसा था कि लोग आते थे और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को कवि प्रदीप जी को पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर,
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो और वो सुन भी लेते थे, ऐसा माहौल था तब वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनके गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे और गुजराती, मतलब गुजराती भी क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा
0: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं, दो तीन रेडियो थे क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हर कण कण में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है।

0: बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी उस माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा,
0: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहीं तो यही गीत,
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे बच्चों
1: संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने

0: बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भी मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा। क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घूमती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनूं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

0: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग

0: के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म थ्री इडियट से सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया।

हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार।

0: फिल्म सात खून माफ से आपने अभी सुना ये गीत उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज का गाया। अब आप सुनेंगे अगला गीत दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज में फिल्म एक्शन रीप्ले से।
1: Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, shake it to the right, all my ladies and my men.

एक्शन रिप्ले फिल्म से श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत, और ये गीत ही था हमारे आज के फिल्म संगीत प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

तब अस्तित्व के हर पहलू को बदल दिया है। पहिया के विकास से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे हालिया प्रगति तक आधुनिक दुनिया के विकास में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सरल, अधिक उत्पादक और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ हो गया है। प्रौद्योगिकी के कई अच्छे सुधार लाए हैं जिन्होंने हमारे जुड़ने के तरीके और पर्यावरण को बदल दिया है। सेलफोन से लेकर वर्चुअल रियलिटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हालांकि समाज पर

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today's topic is all about technology for the social good. भविष्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका और समाज पर इसका प्रभाव। कुछ ही दशकों में तकनीकी नवाचार ने मान

जिन्होंने हमारे जुड़ने के तरीके और पर्यावरण को बदल दिया है। सेलफोन से लेकर वर्चुअल रियलिटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हालांकि समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव हमेशा लाभकारी नहीं रहे हैं। इसके कई अनुकूल प्रभावों के बावजूद अवांछनीय दुष्प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं, जिन्हें नियंत्रण किया जाना चाहिए। समाज पर टेक्नोलॉजी के कुछ नकारात्मक प्रभाव में तकनीकी निर्भरता, साइबर बुलिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन शामिल है। स्वचालन और AI के बढ़ते उपयोग ने नौकरियों के नुकसान और बढ़ती आय के अंतर के बारे में चिंताएं पैदा की है। नए तकनीकों के निरंतर उभरने के कारण प्रौद्योगिकी का भविष्य और भी दिलचस्प प्रतीत होता है। हालांकि ये नवाचार स्वागत योग्य सुधार ला सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि हम उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जोखिम को नजरअंदाज न करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। अगले वर्ष में हमारी दुनिया को परिभाषित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आधुनिक समाज पर प्रौद्योगिकी के उच्च और नकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। वी ऑल नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आधुनिक तकनीक में सबसे आकर्षक विकास में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI है। आवाज पहचान, चित्र पहचान और NLP ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां AI ने बहुत प्रगति की। फिर भी AI के पास इससे कई ज्यादा आशाजनक अनुप्रयोग है। स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय और परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने की भी क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का अर्थ है आपस में जुड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की वैश्विक प्रणाली, जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा और निर्देशक को आदान प्रदान कर सकता है। उद्योग से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के सेंसर इस श्रेणी में आते हैं। घर को संचलित बनाते हैं, ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने और परिवहन में सुधार करने में IoT के साथ बहुत सफलता मिली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब सर्वव्याप्ती है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में ये प्रवृत्ति और भी तेज होगी। पिछले कई वर्ष में संवर्धित और आभासी वास्तविकता दोनों में रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आभासी वास्तविकता VR और संवर्धित वास्तविकता AR दोनों का लक्ष्य उपयोगकर्ता को भौतिक दुनिया पर आरोपित डिजिटल जानकारी के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। इन तकनीक का उपयोग मनोरंजन, शिक्षा और चिकित्सा उपचार आदि में किया जा सकता है। आभासी और संवर्धित वास्तविकता के अनुभवों के और भी अधिक यथार्थवादी और मनोरंजक होने की उम्मीद है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक अंतर्निहित तकनीक पर निर्भर करता है। फिर भी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग केवल क्रिप्टोकरेंसी के अलावा और भी कई कामों के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक विपरीत खाता है जो सुरक्षित डेटा भंडारण और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ऐसा कुछ उदाहरण है जो बहुत लाभ उठा सकते हैं। 5G के मोबाइल नेटवर्क मौजूदी चौथी पीढ़ी 4G नेटवर्क की तुलना में काफी तेज और कम धीमी होगी। 5G नेटवर्क द्वारा स्वायत्त वाहनें, स्मार्ट शहरें और टेली सर्जरी सहित नए उपयोग संभव हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के मुद्दे ने 5G नेटवर्क की शुरुआत को धीमी कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग के केवल दो उदाहरण हैं, लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्वांटम कंप्यूटिंग को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने से पहले पार करना होगा। उद्योग और चिकित्सा में ऐसे नवाचार कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करते हैं, उन्हें जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। चिकित्सा, खेती और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन में भी ऐसे कई क्षेत्र में से कुछ है जो जैव प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो सकते हैं। जब नई बीमारी के उपचार और इलाज खोजे जाते हैं तो आने वाले वर्ष में जैव प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रोबोटिक्स अनुसंधान का मुख्य ध्यान संचलित उपकरणों पर है जो कुछ निश्चित कार्य कर सकते हैं। निर्माण, चिकित्सा और परिवहन सहित और कई उद्योगों को रोबोटिक्स के उपयोग से लाभ हो सकता है। मानव जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं वाले मशीन बनाने में रोबोटिक्स

के भविष्य की आशा है। क्लाउड में कंप्यूटिंग में डेटा के रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित करना और उसे स्टोर करना शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा डेटा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक प्रोग्राम और सेवाएं बनाई जा रही है, इसकी प्रमुखता केवल बढ़ाने का अनुमान है। उदाहरण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग वॉइस असिस्टेंट और पिक्चर आइडेंटिफिकेशन सेवाएं जैसे AI प्रोग्राम चला सकती है। जैसे जैसे तकनीकी का प्रचलन बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर और नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घुसपैठ से सुरक्षित रखने का अभ्यास है। साइबर खतरे को प्रचलन बताते हैं कि डेटा की सुरक्षा का महत्व और बढ़ेगा। संचार की उन्नति आधुनिक सभ्यता के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे उल्लेखनीय लाभों में से एक है। तकनीकी प्रगति के कारण अब हम तुरंत और अधिक आसानी से संदेश भेजे और प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्लीकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी की व्यापक उपलब्धता के कारण दुनिया भर के लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसकी वजह से लोग अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं और मूल्यों वाले समुदाय बना सकते हैं। इंटरनेट के आगमन के साथ पहले से दुर्गम ज्ञान अब हर किसी की पहुंच में है। इंटरनेट ने किसी के लिए भी कुछ ही माउस क्लिक के साथ नए विचार प्रथाओं और दृष्टिकोणों से परिचित होना संभव बना दिया है। इसीलिए लोग अपने समय पर ज्ञान प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में बेहतर सक्षम है। साथ ही इससे स्वास्थ्य विज्ञान और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती है, जिससे अधिक सुविज्ञान नागरिक बन पाए हैं। इन तकनीकों को व्यापक उपयोग के कई सकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि तकनीकी पर निर्भरता, साइबर बुलिंग और निजता का उल्लंघन, जिन्हें संबोधित किया जाना है। बेहतर संचार, सूचना तक आसान पहुंच, अधिक उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि तकनीक ने सभ्यता को कैसे लाभ पहुंचाया है। फिर भी प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर को कम करने और आर्थिक असमानता को बढ़ाने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक समाज के रूप में इन खतरों के बारे में जागरूक रहे और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का आनंद लेते हुए उन्हें कम करने के लिए कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब प्रस्तुत है प्रोग्राम शाम सुहानी।

शाम सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी में आशा की किरण बन रही है।

0: बच्चों के जीवन को शिक्षा की ज्योत से रोशन कर रही हैं। शाम सुहानी कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं समाज सेविका श्रीमती राजपाल कौर मस्त। राजपाल कौर मस्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम सुहानी कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई और आपका बचपन कैसे बीता।
1: पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने हमें यहाँ मौका दिया। बात यह है कि मेरी ये स्टोरी बहुत लंबी है। जन्म मेरा पाकिस्तान में हुआ और जब पार्टीशन हुआ तो मैं हार्डली 3-4 साल की थी। तो पापा आर्मी में थे, फिर हमें दादा दादी के पास रहना पड़ा। जब दादा दादी के पास रहे तो आपको पता है उस टाइम पे लड़के और लड़की में बहुत फर्क था
0: जी।
1: दादाजी ने कहना लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, कोई स्कूल नहीं भेजना, लड़कियों को संस्कार घर पे ही दो। कुछ समा भी बहुत खराब था उस टाइम पे और पापा के पास फैमिली स्टेशन था नहीं आर्मी में, डॉक्टर थे मेरे पापा। सो हम दादा दादी के पास रहे, यही हमारी एजुकेशन है। बस मेरी एजुकेशन जितनी भी थी घर पे ही हुई, मैं कभी स्कूल नहीं गई।
0: अच्छा
1: जी, ये मेरे मन में कसक थी कि हम लड़कियों के साथ इतना क्यों किया जा रहा है, पर उस वक्त हमें भी पता नहीं था, माहौल भी बहुत खराब था।
0: लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि अपने दिल की बात अपने माँ को बताएं या अपने पिताजी को बताएं?
1: उस टाइम पे दिल की बात सुनता कौन था बच्चों की, कोई भी नहीं सुनता था। जो बड़े कहते थे वो मानना पड़ता था। संस्कार थे घरों में, ज्वाइंट फैमिलियां होती थी तो सभी बड़ों की इज्जत करते थे, जो बड़े कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बस इतना सा था
0: जी। तो पाकिस्तान से फिर आप लोग यहाँ पे आ गए।
1: पापा को आर्मी वालों ने 3 ट्रक दिए कि जाकर अपनी फैमिली ले आओ। जब तक पापा अपनी फैमिली लेने पहुंचे तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। दादा दादी के साथ मम्मी थी, मैं और मेरी छोटी बहन थी, मेरे 2 चाचा जी थे, 4 बुआ थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। दादा बुजुर्ग थे, पर जैसे कैसे फिर हम पापा को 2 महीने बाद मिले कैंपों में से। फिर पापा ने रुड़की सिलेक्ट किया, आर्मी स्टेशन है वहाँ पे बहुत बड़ा रुड़की में, वहाँ फिर हमको रखा गया पर दादा दादी के साथ।
0: तो ये जो समाज सेवा करने की प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली?
1: एक तो आर्मी में थे पापा, वो हमारे अंदर खून था आर्मी का। दादाजी वैसे बहुत देशभक्त थे तो उनको भी हम देखा करते थे। दादाजी बहुत ही सोशल वर्कर थे, वो भी हमारे में संस्कार थे। तो बस ये मेरी प्रेरणा ही समझो, मेरे पापा और मेरे दादाजी
0: जी
1: जी, उन्हीं से मिली ये प्रेरणा।
0: तो उनके बाद?
1: उनके बाद ऐसे है कि अभी मैं 17 साल की थी तो मेरी एंगेजमेंट कर दी गई। पूछ भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी क्यों, और तब तो लड़कियों को बोलने का कोई राइट भी नहीं था। बहुत दुख लगता था जब लड़के और लड़की में फर्क किया जाता था, वो भी कसक थी मन में भी इतना फर्क क्यों। पर वो अपनी जगह बेचारे सच्चे थे दादाजी, 4 उनकी बेटियां 2 हम पोतियां हो गए, तो मुश्किल तो था ही ना
0: जी। राजपाल कौर मस्त जी, आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसके इन-लॉज भी ईरान इराक से थे। दूसरा बेटा आईएएस ऑफिसर, अब तो वो भी रिटायर हो गया। तो उसके फादर इन-लॉ भी डीसी रिटायर हुए थे। थर्ड वन है जो, उसके भी फादर इन-लॉ एनआईएस के डायरेक्टर थे, एनआईएस पटियाला, और आजकल वो न्यूजीलैंड में सेटल है। बेटी मेरी है जो, उसके भी फादर इन-लॉ डीसी रिटायर हुए। उसके पास ट्विंस बेटे हैं, दोनों पायलट बन गए अब तो एयर इंडिया में, उनकी सिलेक्शन हो गई है। सो मेरे 4 बच्चे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे, बाय नेचर भी अच्छे हैं। कहते हैं ना कि भी किसी होनहार औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है ना
0: जी,
1: आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरे बच्चों का हाथ है
0: जी।
1: 4 बच्चे बहुत अच्छे हैं भगवान की कृपा से। और उसके अलावा जो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, मेरे साथ जो जुड़ी हुई है सारी मेरी फ्रेंड्स, YPS की टीचर है रिटायर्ड, PPS की, लेडी फातिमा की, गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स, मतलब हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। और पटियाला छोटा सा है, सारी संस्थाएं मेरे साथ। सो अब हमारा तो ये फलने फूलने लग गया
0: जी। तो आजकल आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हैं?
1: ऐसे है, जब मैं शादी होके आई तो हरियाणा में आ गई, ये उनसे भी ज्यादा रिजिड थे, मेरे फादर इन लॉ बहुत रिजिड थे, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे औरतों को, वहाँ ट्रेंड भी नहीं था हरियाणा में
0: जी।
1: हाँ, तो बहुत मन की बातें मन में ही रह गईं। मैंने अपने ससुर जी को पूछा कि मैं आगे थोड़ा पढ़ सकती हूँ, कहते हमने कौन सी नौकरियाँ करानी है, घर बैठो, चुप हो गए
0: जी।
1: सो वो सफर भी बहुत मुश्किल था, तो बस घर पे ही रहे। फिर मेरे 4 बच्चे हो गए, तो मैंने मन में सोचा था कि मैं अगर पढ़ नहीं सकी तो मैंने इन बच्चों को तो जरूर पढ़ाना।

0: अंदर ही अंदर मन की बातें थी, मेरी मन की बातें मन में ही थी। मेरे हस्बैंड कहते थे हमारी तो चलती नहीं है फादर के सामने, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें कौन सुनेगा। फिर चुप करा दिया गया हमें, पर मन में रड़क तो थी। फिर 76 में, मेरी 62 में मैरिज हुई थी
1: जी।
0: तो मेरे फादर इन लॉ ने सबको सेपरेट कर दिया, चार भाई थे, चार बच्चे उनके लड़के, तो सेपरेट कर दिया गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा अब एजुकेशन को सोचते हुए अगर हम यहाँ से शिफ्ट हों तो, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्रा में आई थी शादी होके
1: जी।
0: फिर हमने पटियाला चूज किया एजुकेशन सेंटर को समझते हुए, और 76 में हम पटियाला शिफ्ट कर। सो फिर मेरे हस्बैंड कहते ले अब जो तेरे मन में थी ना बात पूरी करो। एक तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, तो मैंने कहा कैसे लेडीज कीर्तन करती हैं, मुझे वो भी बहुत शौक था। और फिर मैंने चारों बच्चों की सिंगिंग की ट्यूशन रखी, वेरी फेमस प्रोफेसर तारा सिंह जी
1: जी।
0: तो चारों बच्चों की ट्यूशन रखी, तो मैं पास बैठती थी बच्चों के, क्योंकि मुझको खुद को शौक था। फिर मैंने उनको कहा सर मैं सीख सकती हूँ, कहते हैं इस लाइन में उम्र का कोई हिसाब नहीं है, आप सीख सकते हो। तो मेरे हस्बैंड की तरफ से तो मुझे ओके है ही थी कि अब तूने जो करना है करो।
1: बिल्कुल, जब जीवन साथी का साथ
0: जी,
1: आपको
0: जी,
1: मिलता है तो जिंदगी में जो सपने हैं
0: ये
1: वो आप साकार कर सकते।
0: ये जितने अच्छे थे ना, बाकी के सारी फैमिली एक तरफ थी, मेरे हस्बैंड एक तरफ थे
1: जी,
0: इतने अच्छे थे।
1: तो जरूरतमंद बच्चों को उनकी पढ़ाई को लेकर आपने मस्ती की पाठशाला शुरू की, ये विचार कहां से आपके मन में आया?
0: ये विचार बस ऐसे ही है, 76 में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो हम डेली गुरुद्वारा और मंदिर पैदल जाते थे, तब यंग थे हम, रूटीन था। तो रोड साइड पे जो बच्चे मैं देखती थी ना, या मेरे हस्बैंड देखते थे, कहते थे एक ध्यान रखना, अगर तेरे को कसक है ना कि मैं पढ़ी नहीं, मैंने सबको पढ़ाना, तो इनसे शुरू करना। तो मैं कभी पर्स नहीं उठाती थी, थैला उठाती थी, थैले में कभी टॉफियां डाल लेनिया, कभी रस, कभी बिस्किट, कभी भाई रोड साइड पे मैं बांटती। मैं सोचती जो मैंने मंदिर गुरुद्वारे चढ़ाना है ना, 10-20-30 जो भी है, वो सामान मैं थैले में डालती और उन बच्चों को दे देती। क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी की दो लाइनें हैं कि गरीब दा मुंह मेरी गोलक है
1: जी,
0: जरूरतमंद को खिलाओ, उनकी जरूरतें पूरी करो तो भगवान की है, एक ही बात है। सो वो था मन में। और मेरे हस्बैंड फिर बस, मेरी बदकिस्मती थी, बैड लक थी, 95 में ये एक्सपायर हो गए। तो बहुत बड़ा यू टर्न आया जिंदगी में, और कुछ समय के लिए तो आसमान से गिरती है, जो मेरे साथ बीता
1: जी।
0: तो मैं तो हार्डली 48 की थी, तो चार बच्चे, पर पता नहीं कैसे फिर बच्चों ने भी कहा कि मम्मी जब पापा कहते थे एजुकेशन ही बांटनी है, तो सोचो कुछ जिंदगी का, कैसे अपनी राहें खुद निकालो। बच्चे मेरे चारों खूब पढ़े लिखे हैं, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। तो मैंने भी सोचा भी ऐसे रोने से तो काम भी नहीं चलेगा ना। मेरी एक डॉक्टर थी मिसेस सिंगला, उन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया, फ्रेंड्स ने बहुत बैकअप किया मुझे। उन्होंने कहा देखो पीछे मुड़कर जिंदगी देखी तो जा सकती है, पर जीने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ऐसे वो हौसला था मन में, फिर सोचा कि अब ये वो राह जहाँ से कोई वापस नहीं आता
1: जी।
0: तो खुद ही मैं अपने आप ही, चाहे भगवान की कृपा समझो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे साथ 101% ऐसे ही हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन बच्चों को जब मैं टॉफियां बांटती तो उन्होंने मेरा नाम टॉफियों वाली आंटी रख दिया, और फिक्स टाइम था गुरुद्वारे जाने का, मंदिर जाने का, तो मेरे चारों तरफ वो इकट्ठे हो जाते कि आज कुछ मिलेगा। तो जब मैं बांटती 8-10 बच्चे डेली मैं देखने लगी, मैंने कहा बेटा आप लोग पढ़ते हो, क्या करते हो सारा दिन? तो बोले हम कोई कंचे खेल रहा है, कोई लकड़ियां तोड़ रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कुछ यही कैटेगरी थी। तो मैंने कहा अगर हम आपको पढ़ाएं तो, कहते हैं जी ये हमें तो पता नहीं, हमारे मम्मी पापा से पूछो। फिर मैं डोर टू डोर गई उन बच्चों के साथ, उन्होंने भी कहा भी आपने पढ़ाना तो पढ़ा दो, हमने तो बर्तन ही मांजने। सो ऐसे ये सिलसिला मेरा, मैं बस घर से एक बेड कवर लिया, एक कुर्सी ली, बस मैं फिर 7 बच्चों को लेके बैठ गई फुटपाथ पे। मतलब मुश्किल ये थी कि मेरे बच्चे सोचते थे मम्मी गुरुद्वारे गई हुई है,
1: लेकिन आप उन जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा रही होती।
0: यस, क्योंकि बच्चे कहाँ लाइक करते मैं सड़क पे बैठूं
1: जी।
0: उन्होंने तो यही सोचना था कि भाई आज पापा नहीं है तो माँ ऐसे सड़क पे बैठेगी, उन्होंने रोक देना था, फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी
1: जी।
0: तो 1-1.5 साल बाद जब उन्हें पता चला, बच्चे कहते मम्मी ये क्या, मैं कहा बेटे अब तो जो है यही है, और मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब

0: मुझे रोकना मत। इन बिटवीन वहाँ फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया, मैं बहुत घबराई कि अब क्या होगा हमारा। तो वहाँ ना एक 5-6 हजार गज में कोठी थी, इतनी बड़ी कोठी, तो मैंने उनका गेट नॉक कर दिया। तो अंदर से एक मैडम निकले, कहते बोलिए। मैंने कहा जी ये हमारी प्रॉब्लम है, अगर आप जब तक फ्लाईओवर बनता है 1.5 साल तो आराम से लगेगा, तो हमें आप अपनी कोठी में जगह दे देंगे। वो कहती आंटी हम आपके साथ हैं। तो मेरा वहां से हौसला बहुत बढ़ गया और मैं उनकी कोठी के अंदर बच्चों को लेके बैठ गई। बस फिर तो वेन्यू अच्छा मिल गया हमें, तो फिर तो बच्चे बढ़ते ही चले गए मेरे पास
1: जी। तो मस्ती की पाठशाला में कौन कौन से बच्चे आते हैं आपके पास, और आज की अगर बात करें तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें?
0: देखिए वहाँ बच्चे तो ऐसे ही आएंगे, मेड्स के बच्चे, वेटर्स के बच्चे, रिक्शा वाले, मजदूर, यही कैटेगरी है मेरे पास
1: जी।
0: और इन्हीं को मैं उठाना चाहती हूँ, क्योंकि देश में इनकी बहुत तादाद है, गिनती इनकी ज्यादा है। क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती थी, वहाँ भी एजुकेशन है ही नहीं थी, पावर्टी इतनी थी कि मेरे दादा जो उस टाइम पे भी पुराने कपड़े थैले में भर भर के बांटने जाया करते थे, मैं वो भी देखती थी। पापा डॉक्टर थे तो वो फ्री इलाज कराते थे सब बुजुर्गों का और ऐसे बच्चों का। बच्चे इतने इकट्ठे हो गए, इन बिटवीन फ्लाईओवर बन गया, तो हमें भगवान ने छत भी दे दी, नीचे बैठने को फर्श भी दे दिया। फिर तो मेरा भी हौसला बहुत बढ़ गया था। तब तक छोटा सा है हमारा शहर, सब लोग जानते हैं, किसी को मैंने टाट कह दिए, टाट आ गए, 4 कुर्सियां आ गई, टेबल आ गया। सो हमारा ऐसे सिलसिला मस्ती की पाठशाला का शुरू हो गया। और तब तक मेरे पास कम से कम नहीं तो 30-35 बच्चे हो गए थे
1: जी, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं अपनी मस्ती की पाठशाला के बारे में। यहाँ पर हम आपको और अपने सुनने वालों को एक गीत सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
1: बहुत ही बढ़िया,
0: ये मेरा फेवरेट सॉन्ग,
1: आइए सुनते हैं ये गीत।
2: किसी की

गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी, और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं समाज सेविका श्रीमती राजपाल।

0: कौर मस्त। राजपाल कौर जी, आप बता रही थी कि मस्ती की पाठशाला आपने किस तरह से शुरू की और धीरे धीरे किस तरह से आप आगे बढ़ती गई, तो पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज आप लोग करवाते हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके?
1: सबसे पहले तो मैं बच्चों को अपने देश के कल्चर के बारे में जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कितने त्योहार हैं इंडिया में। मान लीजिए नवरात्रे ही समझ लीजिए। अब नवरात्रे में नवरात्रे मीन्स नौ देवियां मीन्स नौ शक्तियां। तो मैं एक नवरात्रा जो वो देवी है उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या कहना चाहती है, मैं वो बच्चों को समझाती। फिर नेक्स्ट मतलब नौ के नौ नवरात्रे मैं बच्चों को प्रॉपर समझाती कि हम क्यों मनाते हैं, इनके पीछे क्या कहानी है
0: जी।
1: और वो मैं वही देवी बनाती बच्चे को, ताकि बच्चों के ना जहन में बैठ जाए बात कि नवरात्रे का क्या मतलब है। ऐसे ही मान लीजिए जन्माष्टमी आ गई, फिर मैंने बच्चों को कहना जी कितने बच्चे कृष्ण जी बन के आएंगे, राधा बन के आएंगे, मतलब कृष्ण जी कौन थे
0: जी।
1: तो उनको इस वे से उनको ना ज्यादा समझ आती है, ना कि किताबों में पढ़ लो आप खाली
0: जी।
1: तो मेरी कोशिश होती है कि मस्ती की पाठशाला मींस मस्ती। और मेरा उद्देश्य यह है कि हर बच्चा मेरा स्कूल जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने 7 बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया, उसके बाद तो फिर मैं हर बच्चा स्कूल भेजती हूँ। और शाम को 2 घंटे हम बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं, उनको स्नैक्स देते हैं, उनकी नीड्स पूरी करते हैं। किसी के पास पेंसिल नहीं है, शॉर्पनर नहीं है, कापी नहीं है, बैग, जो भी वो कहें हम कोशिश करते हैं पूरी करने की
0: जी।
1: सो ऐसे इसलिए उसका नाम मस्ती की पाठशाला, ताकि मस्ती मस्ती में हम बच्चों को समझा सकें। अब मुझे एक रात ऐसे हुआ, नींद नहीं आ रही थी कि कल मैंने बच्चों को क्या बताना है, क्या समझाना है। तो मैंने क्या किया, कागज उठाया, उसपे एक हाथ रखा, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ क्या किया कि हर काम घर से शुरू करो, पहले घर, फिर अपनी कॉलोनी। देखो कॉलोनी में कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जिसको कोई पूछता नहीं, या कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है कोई पढ़ाता नहीं। तो कॉलोनी, देन अपना शहर, देन अपना स्टेट, देन अपना देश
0: जी।
1: तो देश अपने आप ठीक नहीं हो जाएगा, अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा
0: जी।
1: ऐसी बातें मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ आइए आपका ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन है, फिर बच्चे कोशिश भी करेंगे बनाने की, और उसमें फिर क्या लिखना है उनको अपने आप पता चल जाएगा।
0: बिल्कुल। तो राजपाल कौर जी, ये जो आप समाज सेवा कर रही हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: चुनौतियों तो आप मत ही पूछिए, क्या चुनौतियां समझाऊं। लोग कहते थे ले इतने बड़े घर की औरत और सड़क पे बैठी हुई है, सुनना बहुत मुश्किल है। पर मेरे दादाजी कहा करते थे भगवान ने 2 कान दिए आपको किस लिए, कि जो चीज आपको पसंद नहीं साथ के साथ बाहर निकाल दो
0: जी,
1: क्योंकि लोग तो आपको जीने नहीं देंगे।
0: बिल्कुल। देखिए इरादा पक्का हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। चुनौतियां हजार आएंगी आपकी जिंदगी में,
1: बहुत आई चुनौतियां, तो बहुत आई। जो लोग हंसते थे ना पहले, फिर जब देखा कि ये तो हटी नहीं और बच्चे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे साथ जुड़ने लग गए
0: जी। तो आज कितने बच्चे हैं आज?
1: अगर कोविड से पहले मेरे पास 150 बच्चा था
0: जी,
1: फिर कोविड के बाद तो सब कुछ तहस नहस हो गया जैसे सबको पता ही है। उसके बाद अब तो 40-50 तक है
0: जी,
1: क्योंकि कुछ बच्चे बड़े होके चले गए, कुछ की शादियां हो गई।
0: राजपाल कौर जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहां पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे। तो अब कौन सा गीत सुनाएं?
1: इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी, और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं समाज सेविका श्रीमती राजपाल कौर मस्त। राजपाल कौर जी, आप बता रही थी कि किस तरह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से आप बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ती गईं, और ये जो समाज सेवा आप कर रही हैं, तो इस समाज सेवा के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
1: कैसे बताऊं, एक बार मैं बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी तो ऊपर से ना सतीश वर्मा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी के आए, उन्होंने मेरे बच्चे को पीपीएस में भी पढ़ाया हुआ था, तो फ्रेंडली थे हमारे साथ, तो कहते हैं मस्त आंटी ये आप क्या कर रहे हो? मैं कहा आप देखो ना, बच्चों के साथ मस्ती कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो कहते फिर भी इसको कोई नाम दो आप। मैंने कहा नाम से मैंने क्या लेना, और मुझे पता भी नहीं था कि हम कभी यहाँ तक पहुंचेंगे। मैं कहा नाम तो की लेना सतीश, कोई बात नहीं। नहीं, कहते फिर भी आपको नाम देना पड़ेगा, अगर हम किसी से बात करें तो क्या कहें
0: जी।
1: तो मैंने कहा फिर तुम ही दे दो ना नाम। तो कहता फिर रख दो ना मस्ती की पाठशाला।
0: अच्छा, तो वहाँ से मस्ती की पाठशाला
1: नाम वहाँ से मिला मुझे
0: जी।
1: हाँ, कितने सालों बाद।
0: आप बता रही थी कि आप गा भी लेती हैं और आपको गाने का बहुत शौक है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: गाने के बारे में तो इतना शौक है कि हमारे टाइम पे ना विविध भारती होता था गीत,
0: आज भी है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करने हैं, ये भी विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है।
1: पर तब गीतमाला हो, बिनाका गीतमाला के कुछ अब मेरे को याद नहीं,
0: बिनाका गीतमाला आया करता था।
1: यस, तो उसको हम ऐसे सुनते थे भी, खाना मिले या ना मिले हमने वो सुनना जरूर है। हालांकि घर के नहीं पसंद करते थे, माहौल नहीं था, तो हम चोरी चोरी भी सुनते थे वो। तो फिर ससुराल में भी उन लोगों को गीत नहीं अच्छे लगते थे लेडीज का। फिर मैं पटियाले आके मैंने थोड़ा बहुत ये शुरू किया प्रोग्राम, फिर मैंने तबले वाले रखे, हारमोनियम भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा
0: जी।
1: हाँ, शौक तो था पर पूरा नहीं हुआ, ये विद्या बहुत मुश्किल है। हाँ, इतनी आसान नहीं है
0: बिल्कुल, एक साधना की तरह आपको पूरा जीवन लग जाता है एक तरह से
1: जी, जी,
0: सीखने
1: जी,
0: के लिए जी। तो क्योंकि आप गाती बहुत अच्छा हैं, थोड़ा हमारे सुनने वालों को सुनाइए क्या गाएंगी आप।
1: इसको भजन भी नहीं कह सकती, गीत भी नहीं कह सकती, कविता ही समझ लो, पर अच्छी लाइनें हैं। क्योंकि मैं मस्ती की पाठशाला में ना, मैं कोई भी ऐसा गीत नहीं किसी को गाने देती
0: जी।
1: आप सोच नहीं सकते कि जो बोलियां होती है ना पंजाबी च, वो भी मैंने खुद लिखी एजुकेशन पे
0: जी।
1: हाँ, क्योंकि पता है क्या, हम लड़कियों को सास बहू की बड़ी बोलियां, सास ऐसी सास ऐसी सास ऐसी, तो मैं कहती हूँ आप बेटी को शुरू से ही दिमाग में भर देते हो सास के लिए, काम सीख ले सास क्या कहेगी, ये काम कर लो दूसरे घर में क्या करोगी, भाई क्यों क्यों, वो तेरी माँ है, वो लड़के की माँ है तो दोनों माँ ही ना।
0: बिल्कुल,
1: पता नहीं है पंजाबी में ही है दो लाइने, वे कहते ने अपने हिस्से दी खाइए खाइए ना किसे दी, अपने हिस्से दी खाइए खाइए ना किसे दी, सस नू ना निंदो भी माए किसे दी
0: जी। बिल्कुल,
1: तो हम ही ने बच्चों को संस्कार देने, लड़कियों को खास करके। तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखवाया हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तीसरा मैंने लिखवाया बेटी बसाओ। आज इस चीज की बहुत जरूरत है समाज में
0: जी।
1: कानून तो बन गए हैं बराबरी के, पर उसके कितने ही गलत फायदे उठाए जा रहे हैं। क्यों, कितना नुकसान होता है, हर दूसरे घर में तलाक हो रहे हैं, हर दूसरे घर में तलाक।
0: बिल्कुल, समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: हाँ जी,
0: तो आप कुछ गाने वाली थी
1: जी जी
0: जी।
1: हाँ, मैं यही कह रही थी, मैं बस मेरा गीत समझो। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का उद्धार करें, पहले हम खुद सुधरें फिर औरों का सुधार करें, ऐसा जीवन

0: ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो।
1: जी बहुत ही खूब आपने गाया। तो आपको समाज सेवा के लिए पंजाब के राज्यपाल से सम्मान भी मिला, तो कितना मायने रखता है आपके लिए ये सम्मान?
0: मैं तो हर बात पे खुद से डरती हूँ कि मैं कहाँ पहुँच गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बार ऑल इंडिया गुरु नानक इंस्टीट्यूट दिल्ली से मेरी ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया आपको कितने अवार्ड अब तक मिल चुके। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी गिने भी नहीं थे, लाए और रख दिए, लाए और रख दिए। फिर बाद में मैंने कहा गिनो तो सही। सो मेरे को 81-82 छोटे बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें हाईएस्ट था ये लास्ट ईयर जो मिला गवर्नर अवार्ड। फिर जब गवर्नर अवार्ड मिला तो फिर मेरे को बीबीसी वाले भी आ गए, पीटीसी वाले भी आ गए, सारे चैनल। मैंने कहा ये अच्छा अवार्ड मिला है, हर दूसरे दिन आओ जी, हर दूसरे दिन हम आ रहे हैं जी। देखिए अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया
1: जी।
0: आज मेरा इतना बड़ा कारवा हो गया कि अब मैं थकने लग गई हूँ। एक तो उम्र का तकाजा हो गया
1: जी,
0: और ऊपर से बिजी ज्यादा रहने लग गई।
1: तो ये जो अवार्ड आपको मिला गवर्नर अवार्ड, किसको श्रेय देना चाहेंगी इसके लिए?
0: देखिए मैं तो अपने बच्चों को श्रेय दूंगी जिनकी वजह से मुझे मिला। लोग तो कुछ भी सोचें, पर अगर आज वो बच्चे ना होते या इस रास्ते पर ना चलती तो आज मुझे कौन पहचानता था। सो इसका श्रेय मैं तो अपने बच्चों को दूंगी जिनको मैं पढ़ा रही हूँ।
1: क्योंकि आपने अपना सफर जो है आपने बताया, जैसे कि सड़क से आपने शुरू किया और किस तरह से आपने मस्ती की पाठशाला रच दी, तो कोई ऐसा बच्चा जो आपने शुरुआत कराई हो और उसने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है?
0: बिल्कुल किया है जी।
1: उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: एक बच्ची थी, उसके फादर की ना लेग्स नहीं थी, तो दिन भर जूस बेचता था, उसको कुर्सी पे बिठा देते थे। तो मुझे बहुत दुख लगा, मैंने कहा तेरे बच्चे कहता एक बेटा एक बेटी, मैं बेटी को मैं पढ़ाऊंगी। तो मस्ती की पाठशाला में आती पढ़ती, फिर उसने वहाँ पढ़ने के बाद पढ़ाया भी बच्चों को। आज वो पटियाला जेल में क्लेरिकल जॉब में ऑफिस में लगी हुई है
1: जी।
0: एक हमारी बच्ची कनाडा पहुंची, वो भी स्टडी बेसिस पे। मैंने कहा अगर वो पढ़ना चाहती है, जाना चाहती है, तो हम आपके साथ हैं, चाहे मैं जहां से पैसा लाऊं। जितनी हमारी कोशिश थी, जितना हम कर सकते थे, हमने किया
1: जी। तो आपका ये जो समाज सेवा का काम है, समाज से किस तरह की मदद मिल रही है आपको?
0: क्या बताऊं, थोड़ी थोड़ी करके मैं चली जाती हूँ हर एक अफसर के पास। तो मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में चली गई
1: जी,
0: क्योंकि बिल्कुल सड़क थी हमारी, कोई आ रहा है सीधी गाड़ी लेके आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके आ, कभी गाय भैंस आ गई। मैं कह तो बड़ी मुश्किल है, किसी के बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं जिम्मेवार होऊंगी। तो मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में चली गई। मैंने कहा जी के शर्मा थे आई थिंक, तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी। तो मैंने कहा जी हमें छोटी छोटी बाउंड्री करवा दो ताकि व्हीकल्स भी बंद हो जाएं और भेड़ बकरियां भी, जो भी है वहाँ जो दिक्कत आती थी। तो उन्होंने विद इन वीक ही मुझे छोटी छोटी दीवार करा दी, मैं बड़ी खुश हुई।
1: राजपाल कौर जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी समाज सेवा के बारे में?
0: देखिए सबसे बड़ा संदेश है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है। मेरे हस्बैंड पंजाबी कवि थे, उनकी एक कविता थी विद्या, तो मैं दो लाइनें बोलूं
1: जी? बिल्कुल।
0: कहते जी विद्या किसे दे प्यो दी नहीं, विद्या किसे दे प्यो दी नहीं, मेहनत करे सो पावे, कई अमीर तरस दे रह गए पर ए हाथ ना आवे। सो जितना हो सकता है विद्या जरूर हासिल करें।
1: राजपाल कौर मस्त जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आप शाम सुहानी कार्यक्रम का हिस्सा बनी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, आपका शुक्रिया जी।
1: दोस्तों शाम सुहानी कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान थी समाज सेविका श्रीमती राजपाल कौर मस्त। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है मीनाक्षी कालिया। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र शाम दे 6 बजन वाली ने हुण तो कुछ ही पलां तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में

0: 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में LPG वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र में लोगों से आवाजाही के लिए पर्यावरण अनुकूल साधनों का प्रयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। आज हांसी और हिसार में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सभी से योग अभ्यास करने की अपील की और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। CBI ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। CBI अधिकारियों के अनुसार 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और एक निजी कंपनी और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और सरकारी अधिकारियों को इसके लिए कथित अनुचित लाभ मिले। नोएडा स्थित एक कंपनी के खाते में हेराफेरी की राशि भेजी गई, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। CBI ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद पंचकूला की CBI अदालत के समक्ष प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कुरुक्षेत्र में ईंधन बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में गुरुकुल पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, भूमिगत जल बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है।
3: इस समय हमारी धरती बंजर हो, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया डीए

0: कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसानों से आग्रह करेंगे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके।
1: उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर तेल संकट गहरा रहा है और भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर तेल आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाने से एक और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो दूसरी ओर इससे जुड़े जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से ई रिक्शा और अन्य पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हांसी में विशेष योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि योग अभ्यास किया। योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व निर्धारित तैयारियों में पूरा देश लगा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 1 जून से गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने सभी से योगाभ्यास करने की अपील की।
2: आज 12वें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के यहाँ पर सभी लोग पहुँचे। देखिए, बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ हो आपके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसका समय देना और समय देने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों में इस तरह की विद्या ये हम लोगों को विरासत में दी हुई है। बस हमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत है। तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि ये योग का जो अभ्यास चल रहा है इस अभ्यास में सब लोग शामिल हो।
1: हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा योग के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने सभी को योग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। श्री महिपाल ढांडा ने आह्वान किया कि योग अभ्यास में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में संपन्न हुई। रैली के दौरान श्री गौरव गौतम ने लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
3: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है, संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर हमारे युवा साथियों के साथ आज हमने साइकिल यात्रा की है। और ये साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सका। और स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे। अपने जीवन में 1 घंटा जरूर चाहे साइकिलिंग करें चाहे व्यायाम करें।
1: इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। जींद के नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 68 लोगों ने रक्तदान कर इस महादान में अपना सहयोग दिया। संस्था के पदाधिकारी रजनीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल से रक्त की कमी होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया।
4: और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम गर्मी का मौसम है और गर्मी अत्यधिक होने के कारण शहर में ब्लड कैंप बहुत कम लग रहे थे। और सोमवार को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से यहाँ से फोन आया था कि यहाँ पर ब्लड की काफी कमी हो गई है, कृपया आप ब्लड कैंप लगाइए। तो उसी

0: गड़ी में हमने रविवार के दिन यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया है। आज हमारा यहाँ पर 60 से 70 यूनिट का टारगेट रखा गया है, तो अभी तक लगभग 40 के करीब यूनिट यहाँ हो गई है और उम्मीद है कि 70-80 यूनिट हो जाएगी।
1: हरियाणा विधानसभा की मेजबानी कल से 10 जून तक भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधि

0: जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही उस सारे ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू, ए पखा क्यों चलदा छड़ता? बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उना नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तो उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तो मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
2: हर घर सूर्य घर।
3: फॉरेक्स ट्रेडिंग हुण
4: एक ट्रेड विच सिक्सर
5: ए अटक्या।
6: प्रसिद्ध पहला सुरक्षा नहीं तो क्लीन बोर्ड। अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म ते फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब नुकसान धोखाधड़ी अते कानूनी कार्रवाई दा डर।
7: मतलब नुकसान दी हैट्रिक। इसलिए आरबीआई दी वेबसाइट ते जाओ, अधिकारिक सूची दी जांच करो।
6: आरबीआई कहिंदा है
8: जानकार बनो सुचेत रहो।
9: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसीं बलविंदर सिंह बाघा तों प्रदेशी खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सरकार दा कहना है कि भारत विच घरेलू रसोई गैस LPG विश्व पद्धर ते सब तों घट कीमतां ते मिल रही है। CBI वल्लों IDFC फर्स्ट बैंक अते AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले दे संबंध विच चंडीगढ़, पंचकूला ते दिल्ली NCR खेतर विच 6 ठिकाणियां ते छापेमारी। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन वल्लों श्री मुक्तसर साहिब विखे 2 दलित नौजवानों नाल होए तशद्दुद दे मामले च SSP श्री मुक्तसर साहिब तों 9 जून तक रिपोर्ट तलब। अज विश्व खुराक सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सेहतमंद लोक भविख लई सुरक्षित भोजन प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकल पहल तहत पंजाब और चंडीगढ़ च वख-वख थावां ते साइकल रैलियां कराईआं गईआं, लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया हिस्सा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने अज कहा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते LPG दीआं कीमतां विच तेजी नाल वाधे दे बावजूद भारत विच घरेलू रसोई गैस LPG विश्व पद्धर ते सब तो घट कीमतां ते मिल रही है। एक बयान विच पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी गुआंढी देशों नालों सस्ता है अते अमरीका, आस्ट्रेलिया अते कनेडा वर्गियां विकसित आर्थिकतावां विच कीमत तों बहुत घट है। इस विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दा एक लाभ पात्री सालाना पहले 4 रिफिल ते 300 रुपए का सीधा लाभ तबादला प्राप्त करने तों बाद 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर लई 642 रुपए अदा करता है, जदों कि दिल्ली विच एक आम खपतकार लई प्रचून कीमत 942 रुपए है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कल IDFC फर्स्ट बैंक अते AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले विच चंडीगढ़, पंचकूला अते दिल्ली NCR खेतर विच 6 ठिकाणियां ते छापे मारे। यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों अते चंडीगढ़ नगर निगम ते चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रैस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी नाल संबंधित है। CBI ने एक बयान में कहा है कि बेनिजमियां और अपराध तो प्राप्त रकम हासिल करने के मामले में हरियाणा काडर के सीनियर लोक सेवकों एक निजी सलाहकार फर्म के डायरैक्टर के रहायशी टिकाणे से छापे मारे ने। जांच दौरान पता लगा है कि लोक सेवकों ने बैंक अधिकारियों नाल मिली भुगत की सी अते खाते खोलन, धन दे तबादले अते गबन विच मदद की सी। CBI इस मामले विच पहला ही 2 विभागों के लोक सेवकों की भूमिका का वेरवा दिंदिया पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन वालों श्री मुक्तसर साहिब के पिंड झोरड़ विच 2 दलित नौजवानों नाल होए तशद्दुद दे मामले नूं अपने तौर ते ध्यान च लिया गया है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन दे चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने दस्सिया है कि यह मामला अखबार विच छपी खबर राही उन्हां दे ध्यान विच आया है, जिस नूं कमिशन वालों अपने तौर ते ध्यान च लैंदिया SSP श्री मुक्तसर साहिब तों 9 जून तक रिपोर्ट तलब कीती गई है। यह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है

0: @AIRJalandhar। विश्व खुराक सुरक्षा दिवस अज विश्व पद्धर से मनाया जा रहा है। यह दिन भोजन सुरक्षा एक सांझे अधिकार और जिम्मेवारी वजों उजागर करता है और समूहक कार्रवाई लिए एक शक्तिशाली मौके वजों काम करता है। सेहत और परिवार भलाई मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अज एक सेहतमंद भविख लिए सुरक्षित और साफ सुथरे भोजन प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल दे विश्व खुराक सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या तो हल तक हर थां सुरक्षित भोजन। एक खेत तो प्लेट तक सफाई अते विज्ञानक ढंग तरीकिया राही भोजन सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे महत्व नूं उजागर करदा है। हर साल 7 जून नूं संयुक्त राष्ट्र दे खुराक अते खेतीबाड़ी संगठन अते विश्व सेहत संगठन राष्ट्रीय अधिकारियां सिविल समाज सिक्ख्या खेत्र दे नाल जुड़े लोकां अते दुनिया भर दे होर हिस्सेदारां दे नाल रल के विश्व भोजन सुरक्षा दिवस मनाउंदे ने। इह दिन भोजन सुरक्षा नूं इक सांझे अधिकार अते जिम्मेवारी वजो उजागर करता है अते समूहिक कार्रवाई लई एक शक्तिशाली मौके वजो काम करता है। विश्व भोजन सुरक्षा दिवस ते एक सोशल मीडिया पोस्ट सांझी करदिआं सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नागरिकां नूं सेहतमंद खाण पीण दीआं आदतां अपनाउण अते एक तंदरुस्त अते आत्म निर्भर भारत बनाउण विच योगदान पाउण दी अपील कीती। उन्हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे संदेश तों दोहराया कि खाणा पकाउण वाले तेल दी खपत नूं 10% तक घटाओ अते बेहतर सेहत अते एक मजबूत राष्ट्र लई संतुलित खुराक अपनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
0: पंजाब दे खेतीबाड़ी अते किसान भलाई पशु पालन मच्छी पालन अते डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार वल्लों नशियां दे खात्मे लई विधी युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम नाल नशियां विरुद्ध लड़ाई फैसलाकुन दौर च पुज गई है। अज सिविल अते पुलिस प्रशासन दे अधिकारियां नाल पिंड बादल दे रेस्ट हाउस विखे पेंडू रक्षा कमेटियां दे मैंबरां नाल इक अहम बैठक करदिआं मंत्री ने कहा है कि अज नशियां विरुद्ध सारा पंजाब एकजुट हो गया है। श्री खुड़िया ने कहा कि युद्ध नशियां विरुद्ध बनी लोक लहर नूं कामयाब करके देश दा पहला नशा मुक्त सूबा बनाया जाएगा। आकाशवाणी जलंधर वल्लों भलके 8 जून नूं KL सहगल आडिटोरियम विखे एक शास्त्री संगीत समारोह एक शाम शास्त्री संगीत दे नाम कराया जा रहा है। भारत विच आकाशवाणी दे प्रसारण दे 90 साल पूरे होण नूं समर्पित यह संगीत समारोह शाम 6:30 ते शुरू होगा। आकाशवाणी दे प्रोग्राम मुखी परमजीत सिंह ने दस्सिया है कि शास्त्री संगीत दे वख-वख रूपां विच गायन दे नाल नाल साज़ां दी जुगलबंदी भी पेश कीती जाएगी। प्योती दी जोड़ी पंडित मनु कुमार सीन अते सुप्रया सीन शास्त्री संतार संतूर जुगलबंदी पेश करनगे। पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच आउंदे दिनां च लू चलण दा येलो अलर्ट जारी कीता गया है। मौसम विभाग मुताबक 10 जून तक चंडीगढ़ समेत पंजाब अते हरियाणा विच कुछ थावां ते लू चलण दी पेशनगोई कीती गई है। इस दौरान अज दर्ज किए गए वध तों वध तापमान नाल पंजाब विच बठिंडा 44.8 डिग्री सैलसीयस तापमान नाल अते हरियाणा विच हिसार 42.4 डिग्री सैलसीयस नाल तापमान नाल सब तों गर्म शहर रहे। केंद्रीय नौजवान मामले अते खेडां बारे मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज सवेरे नवीं दिल्ली विच फिट इंडिया संडे जोन साइकिल पहल दे 77वें एडिशन विच हिस्सा लिया। चंडीगढ़ च खेड विभाग ने भी फिट इंडिया संडे जोन साइकिल दा आयोजन किया। इस प्रोग्राम विच करीब 700 विद्यार्थियों दे खिडारियों ने उत्साह नाल हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाब च भी पटियाला दे नेता जी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स ने भी 7 किलोमीटर की सैकल रैली का आयोजन किया। उधर डेकाथलोन जलंधर वालों भी फिट इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेड भारती पंजाब जिला सैकल एसोसीएशन जलंधर और सैकलिंग एसोसीएशन ऑफ पंजाब के सहयोग न एक विशाल सैकलोथोन का आयोजन किया गया। बुलेटिन के अखीर में खास खबर एक बार फिर तो सरकार का कहना है कि भारत में घरेलू रसोई गैस LPG विश्व पद्धर से सब तो घट कीमतों से मिल रही है। CBI वालों IDFC फर्स्ट बैंक AU फाइनैंस धोखाधड़ी मामले के संबंध में चंडीगढ़ पंचकूला और दिल्ली NCR खेत्र में 6 ठिकाने से छापेमारी। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिश्नर वालों श्री मुक्तसर साहब विखे 2 दलित नौजवानों हुए तशद्दद के मामले SSP श्री मुक्तसर साहब तो 9 जून तक रिपोर्ट तलब अते फिट इंडिया संडे जोन साइकिल पहल तहत पंजाब अते चंडीगढ़ च वख-वख थावां ते साइकिल रैलियां कराईयां गईयां। लोकां ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस दे नाल ही इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन होएगा शाम 7 बजे। नमस्कार।
2: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
3: बेटा
2: याद है बोनस दे कुछ पैसे असीं किसे होर खाते विच रखे सन।
3: 2 सालां तो खाते विच कोई लैण-देण नहीं होया है। हो सकदा है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: तो हुण बैंक जाओ जा वीडियो KYC राही KYC अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त।
3: चलो
2: कितने
3: एडमिशन लेने

0: इस शब्द नाल ही साडा अज दा प्रोग्राम अमृत बाणी हुण समाप्त हुंदा है।
1: आवाजें आती रही, कुछ कानों तक पहुंची तो कुछ दिलों में बस गई।
2: 90 वर्ष पहले एक ऐसी आवाज जो देश की धड़कन बन गई।
1: नाम है आकाशवाणी।
2: भारत की आजादी की पहली सुबह हो, या चंद्रयान की पहली उड़ान,
3: वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून।
1: सीमा पर जवानों की हिम्मत हो या किसानों की मेहनत की बात,
2: हमने हर लम्हे को, हर भावना को आवाज दी 1936 से लेकर आज तक।
1: आकाशवाणी है हर भारतीय की आवाज। 90 वर्ष भरोसे की यात्रा।
2: आइए आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ पर हम मिलकर कहें,
1: ये आकाशवाणी है। सफर आगे भी जारी है, नई उमंगों, नई तरंगों के साथ।
2: 90 वर्ष आकाशवाणी के, देश की धड़कन, हर दिल की आवाज, आकाश।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
5: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा.

0: साथियों, हमारी जिंदगी पल दो पल की होती है। सच पूछे तो हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी सांसें कब तक हमारा साथ देंगी। हम इसी भ्रम के जाल में उलझे होते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी उम्र बहुत है। दुआ तो हम यही करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति लंबी उम्र जिए, लेकिन होनी अनहोनी कब हो जाए किसे पता होता है? और जिन्हें इसका पता होता है वे हैं हमारी भारतीय सेना के वीर जाबाज रणबांकुरे। वे जब सेना में जाने की ठान लेते हैं, ये जानते हुए भी कि जिंदगी का क्या भरोसा, युद्ध भूमि से लौट पाऊंगा या नहीं, या इन दुर्गम बर्फ के दर्रों में, पहाड़ियों में, वीरान इलाकों, घने जंगलों या गर्म तपते रेगिस्तान में अपनी जिंदगी की बाजी खेलनी होगी। जीत मिलेगी या हार, वे तनिक भी इसकी परवाह नहीं करते और युद्ध भूमि में अपना सीना ताने चौकस चौकन्ने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाह

साथियों, दुश्मनों को देखकर वे ऐसी हुंकार भरते हैं, ऐसी गोलियों की बौछार करते हैं कि उनके छक्के छूटने लग जाते हैं। मरेंगे या मार कर आएंगे, कदम ना कभी पीछे हटाएंगे, ऐसी ज्वाला सीने में धधकती रहती है। यही जज्बा एक शौर्य गाथा की कहानी बन जाता है। आज हम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार महावीर चक्र की कड़ी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा से आपको रूबरू करवाने

ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल का जन्म 14 जून 1899 को सांबा जिले के बगुना गांव, जो अब राजेंद्रपुरा है, में हुआ था। सांबा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। ये भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और सुरक्षात्मक

दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। बेहद खूबसूरत नजारों, हरी भरी वादियों से घिरा ये सांबा नगर अपना अनूठा इतिहास रखता है। इसी धरती पर जन्मे कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। वीरता शौर्यता की हवाएं जिस परिवार में हिलोरे लेती हो, वहीं के आप ऐसे वीर लाल हैं। आपके परिवार में बहादुरी और बलिदान की गाथाएं, किस्से, कहानियां भरी पड़ी हैं। आपके पूर्वज जनरल बाज सिंह ने लगभग एक सदी पहले चित्राल की रक्षा में खुद को बलिदान कर दिया था। आपके दादा हमीर सिंह और पिता सूबेदार लाखा सिंह ने भी एक सैनिक के रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना उत्कृष्ट बलिदान दिया। दोनों युद्ध के दिग्गज योद्धा थे। आपका एक सैन्य डोगरा राजपूत परिवार था।

0: भारती पर कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा।
1: वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेर

ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को उनके चाचा लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह ने पाला था। कम उम्र में ही अपने पिता को वे खो चुके थे। साथियों, कितने गर्व की बात है कि आपके परिवार की कई पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपने जम्मू के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 14 जून सन 1921 को जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स में कमीशन लिया था। वे मई सन 1942 में ब्रिगेडियर की रैंक पर पहुंच गए थे और अपनी मेहनत और बहादुरी के चलते 25 सितंबर सन 1947 को मेजर जनरल रैंक पद पर पदोन्नत हुए, यानी जम्मू कश्मीर बल के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर की सेना के इकलौते ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परचम लहराया। उनकी वीरता साहस की गाथा से जम्मू कश्मीर का इतिहास रोशन हो उठा। साथियों, तभी तो उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के रूप में याद किया जाता है, यानी कश्मीर का रक्षक।

0: कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, व्यर्थ न जाएगी यूं उनकी अब ये कुर्बानी, बच्चा बच्चा नमन करेगा, श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा। साथियों, भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन से दंगा फसाद चरम पर पहुंच गया था। सुंदर वादियों, कलकल बहती नदियां, हिम शिखर और मनमोहक रंगों से घिरे खूबसूरत फूलों के इलाके, ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई हो। सांप्रदायिकता की ज्वाला ने जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा, उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। हालात बड़े ही भयावह होते जा रहे थे। ऐसे में दुश्मनों की नजर पैनी हो चुकी थी। देश की आजादी के बाद दुश्मन सेना ने कबालियों के साथ मिलकर ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सन 1947 को उस समय जो वहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद पर दुश्मन सेना के कब्जे की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहन ली और उन्होंने तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलवाया। ये बात सुनते ही कि महाराजा खुद युद्ध भूमि में उतरना चाहते हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उन्हें किसी तरह से समझाया कि उनका इस तरह से जाना सही नहीं है, वे खुद उनकी जगह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराजा हरि सिंह को मोर्चे से दूर रहने की सलाह दी। साथियों, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने महाराजा के साथ एक बैठक में अपनी योजना पर विचार किया और बाद में बादामी बाग पहुंचकर करीब 100 सिपाहियों से जाकर मुलाकात की और अपनी योजना समझाई। उन्होंने तत्काल ही सैन्य मुख्यालय को संपर्क किया और अपने लिए और सैनिकों के दल की मांग रखी। उस वक्त मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने करीब 70 जवानों को मोर्चे पर भेजने की बात कही और उधर महाराजा हरि सिंह ने मुख्यालय की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक लिखित आदेश दिया कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में दुश्मनों को आखिरी सांस और आखिरी जवान तक उरी के पास ही रोके रखें। कैप्टन ज्वाला सिंह संदेश के साथ 24 अक्टूबर की सुबह एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ उरी पहुंच गए। कैप्टन ने सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सौंप दी और महाराजा का पत्र भी उन्हें दिया। इस मोर्चे पर वे अपना सर्वस्व निछावर करने को

अब ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने अपने साथी कैप्टन नसीब सिंह को उरी नाली पर बने एक पुल को उड़ाने का हुक्म दे डाला ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, उनके नापाक इरादों को रौन दिया जाए। दुश्मनों की सेना में जब इसकी खबर लगी तो उनमें हलचल होना, रुकावट होना स्वाभाविक थी। अब क्या करें, कुछ समय के लिए वे रुक गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। हमला दोनों तरफ से भयंकर था। उरी का वो इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। उस जगह करीब 2 घंटे बाद फिर से दुश्मनों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन तब तक पुल उड़ाया जा चुका था। वहां के सभी पुल लगभग तहस नहस कर दिए गए थे, यानी मार्ग बाधित कर दिया। शाम तक अपने मिशन के तहत ये कार्यवाही अंजाम ले चुकी थी, लेकिन उधर दुश्मन भी कब रुकने वाले थे, वे भी आ गए। साथियों, इसके बाद ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने रामपुर इलाके में दुश्मनों को रोकने का फैसला किया और काली स्याह रात में ही वे वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने लिए खंदके खोद डाली। रात भर कड़ी मेहनत कर जवानों ने खंदक खोदी थी, लेकिन सुबह तड़के ही दुश्मनों की सेना की गोलाबारी शुरू हो गई। इधर जवानों ने मोर्चाबंदी इतनी कर रखी थी कि पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, लेकिन दुश्मनों को 1 इंच भी आगे बढ़ने का मौका नसीब नहीं हो पाया था। वहीं दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे के रास्ते से सड़क पर आकर घेरा, जिसके कारण महाराज के सिपाहियों को वहां से निकलने का रत्ती भर भी मौका न मिल सके। यानी दुश्मन भी बड़ी शातिर तरीके अपना रहा था। युद्ध में ऐसा ही होता है, एक के बाद एक चाले योजनाएं बनाई और खेली जाती हैं। कब किसको सफलता मिलेगी यह कह पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में डटे रहते हैं। साथियों, उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मनों की योजना का पता चल चुका था और तकरीबन सुबह का समय रहा होगा अपने साथियों को पीछे हटने और सेरी पुल पर डट जाने का आदेश दिया। पहली दुश्मनों की रुकावट को उन्होंने आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन अभी सिपाहियों के वाहनों का काफिला उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बोनियार मंदिर के पास से दुश्मनों की सेना ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी थी और काफिला इसकी चपेट में आ गया। दुश्मन की गोली वाहन चालक को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गया। कैप्टन ज्वाला सिंह ने बड़ी तत्परता से अपनी गाड़ी के नीचे आकर देखा तो पाया कि तीनों वाहनों के चालक शहीद हो चुके थे। उन्हें ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह कहीं नजर नहीं आए, वे आश्चर्य में भर उठे थे। उधर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनका ड्राइवर भी शहीद हो चुका था। साथियों, वे आगे सेरी पुल के पास पहुंच चुके थे और गोलियों का जवाब देते जा रहे थे। अब तक वे काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनकी अद्भुत वीरता कम नहीं हुई थी। उनकी इस युद्ध में दाई टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लहू बह चला था। असहनीय पीड़ा के बीच वे मोर्चे पर

0: बैठे हुए थे। उन्होंने उसी समय अपने जवानों को आदेश दिया कि वे पीछे हटें और दुश्मनों को वहीं रोक कर रखें। वे इस स्थिति में नहीं थे कि उठ पाते। उन्हें जब सिपाहियों ने उठाने की कोशिश की तो वे अड़े रहे और उन्होंने कहा वो उन्हें पुलिया के नीचे उस स्थल में आड़ में लिटा दे। वे वहीं से दुश्मनों को रोकना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक बड़ी कष्टप्रद स्थिति में वे थे। फिर भी उन्होंने दोपहर तक युद्ध जारी रखा और अंत में उनकी वीर देह शांत हो गई। साथियों, इस तरह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सभी को उनकी वीरता, अदम्य साहस पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें दिल से नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: देश मेरे, देश मेरे।

साथियों, 26 अक्टूबर सन 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था। 26 अक्टूबर की तारीख ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ नाम कर गए। उनके इस बलिदान को शत शत नमन। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी शौर्य की अमर कहानी, युगो युगो तक दोहराएंगे भारत के हर वासी। तुम हो भारत माँ के सच्चे रक्षक, तुम सा नहीं धरा पर कोई और सानी। फौजी साथियों, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को मरणोपरांत 26 जनवरी सन 1950 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, आज की विशेष जयमाला में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो दीजिए अब इजाजत। जय हिंद।

0: 死。
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।
3: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुन पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हरियाणा

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामलमीत।
1: शाबाश डॉगी, शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो डॉगी, एकदम टाइगर हो टाइगर, शाबाश शाबाश डॉगी। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, ओहो, आप दोनों कोने में दुबके बैठे हो। अरे अब तो बाहर आ जाओ ना, चोरों को मैंने भगा दिया है।
2: अरे बेटी, तू कहाँ थी? तू तो अपने कमरे में नहीं थी।
1: तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है मामा, देखा मैंने चोरों को कैसे भगा दिया।
3: बेटी, डॉगी को कहां से ले आई?
1: पापा, मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई। डॉगी ने चोरों को भगा दिया, देखा।
2: बेटी, मेरा तो कलेजा ही निकल गया था।
3: अरे चलो, जान बची लाखों पाए, चोर भाग गए, अब सो जाओ चैन से।
2: तुम्हें तो हमेशा सोने की चिंता बहुत रहती है। अगर डॉगी ना आता तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो, घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है।
3: अरे भगवान, तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा।
1: शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना जरूरी है। अंकल चोपड़ा रोज रोज हमें डॉगी थोड़ी देंगे, उन्हें भी तो इसकी जरूरत है।
2: रजनी के पापा, लेकर आना, जरूर लेकर आना डॉगी को, लेकर आना।
1: मम्मी,
2: हाँ, अरे
1: मम्मी, उफो, उठो ना, देखो कितना दिन चढ़ाया है, मैं तो कॉलेज के लिए तैयार भी हो गई हूँ।
2: अरे रजनी, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना दिन चढ़ाया है?
1: मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी आप भी रात को देर तक जागती रहीं, मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें।
2: बेटी, सो तो ठीक है, पर सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
1: ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो।
2: अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती, फिर भी संभावना तो किसी बात की भी हो सकती है।
1: अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है।
2: चलो, अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए, पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना, वो हमारे भी घर आ सकते हैं।
1: इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए।
2: और क्या, अगर आज सपने में आए हैं तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा, इतनी बड़ी दुकान है, अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे।
1: मम्मी, इतना डरना ना ठीक नहीं है। बस,
2: पर फिर भी सावधान रहने में हर्ज ही क्या है। तुम्हारे पापा जी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा, पर देखो अब तक नहीं आए।
1: पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना।
2: सो तो है ही, पर वो आए क्यों नहीं?
1: उफो मामा, देखो अब 8:30 बजने को हैं, मैं तो चली कॉलेज, बाय। ओह लो, पापा जी भी आ गए। वाह वाह पापा जी, आप तो वाकई तो पिल्ले ले आए।
3: हाँ बेटी, मैंने सोचा एक पिल्ले का भी क्या ले जाना, दोनों ले चलता हूँ, दोनों।
2: हाँ, पहली बार किया कल का काम, अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट ही लिया था।
3: क्या कहा, क्या क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे?
1: पापा जी, आप तो सचमुच डर गए पापा। चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे।
2: पर मैं तो सपने में भी बहुत डर गई।
3: अरे मैं तो गाड़ी से उतर कर आ रहा था, तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था कि एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ वैसे बहुत बढ़िया है।
2: सच रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं।
1: मामा, हाँ
2: लगता है

0: भूखे हैं बेचारे, देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। जा जरा दूध तो लेके आ, अभी पिलाते हैं।
1: पापा पापा ये चूचा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब पिल्ले हैं।
0: अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूचा करेंगे, खास नस्ल के दिखते हैं।
1: ठीक है, अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ, मैं चली अब।

0: Variación de pilalero, lelo babu pilalero.
1: अरे हाँ भाई पिल्ले वाले, जरा इधर तो है ना, आओ जरा।
2: बाबूजी, क्या आपने मुझे बुलाया?
1: अरे हाँ भाई, ये एक पिल्ला कितने का दिया?
2: जी आप ले लो, जो सो है, ठीक ही लगा लेंगे, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे भाई तब भी बताओ तो, कितने के हैं?
2: बस जी ये दो ही रह गए हैं, जो है सो है, वैसे पूरे छह थे।
1: भाई तुम्हारे पिल्ले लगते तो बढ़िया किस्म के हैं।
2: जी मैं तो हमेशा ही बढ़िया माल बेचता हूँ, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे मियाँ शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
2: कसम इन पिल्लों की, ना जाने कितने ग्राहकों से रोज वास्ता पड़ता है बाबू जी।
1: मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2: जमीन पिल्लों की कुछ गड़बड़ लगती है, अरे इससे जान बचाकर भागना ही बड़ा है। अच्छा बाबू जी चलो, धंधे का
1: बखान। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले? मुझे दो पिल्ले और चाहिए ना, कहा तुमसे मैंने।
2: और का क्या मतलब है आपका?
1: इसका मतलब ये हुआ मियाँ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना।
2: अजी कसम इन पिल्लों की, कहा ना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बाबूजी।
1: अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ चलकर सब कुछ ध्यान में आ जाएगा।
2: जी बाबू जी मैं आपके घर चलकर क्या करूंगा, अरे मुझे तो अपनी रोजी कमानी है।
1: मैं भी तो तुम्हारी रोजी में ही अपना हिस्सा डालने की बात कर रहा हूँ।
2: तो फिर यही क्यों नहीं ले लेते? आपको ये बिल्ले कसम इन बिल्लों की।
1: इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना मिया।
2: अच्छा बाबू जी मैं चला।
1: अरे भाई मैंने कहा ना, मैं दो पिल्ले और खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो हमें दो पिल्ले पहले दिए थे ना, अरे वो क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया नस्ल के निकले। अब तो तुम्हें ध्यान आ गया होगा कि मैं कौन हूँ।
2: जो है सो है, क्या वो बहुत अच्छे निकले? मुझे याद आया बाबू जी, छह महीने पहले ही आपको दो पिल्ले बेच गया था।
1: इसीलिए तो मुझे दो पिल्ले और खरीदने हैं मियाँ, किसी रिश्तेदार ने मांगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिल्लों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है।
2: जो है सो है, ठीक है ठीक है बाबूजी, पर मेरा तो ख्याल था कि यही ही।
1: अरे वो एक बात है, वो कहने की ये बात है कि क्योंकि मैं तुम्हें पैसे घर जाकर ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास है नहीं। घर चलो।
2: जैसी आपकी इच्छा है, जो है सो है, तो चलो बाबूजी।
1: क्या तुमने कुछ सुना मियाँ?
2: ये क्या बोल रहे हैं?
3: क्या आप इसी से वो कुत्ते लाए थे पापा? पापा अभी अभी चोपड़ा अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि ना ये जो है।
4: अरे एक मिनट सबर तो कर, पहले इस कुत्ते वाले की बात तो सुन ले।
1: बेटी तुम जरा दोनों कुत्तों को लेकर तो आओ।
3: अच्छा पापा
4: अभी। अजी उनको अभी भी कुत्ते बोलते हो?
1: कुत्ते वाले के सामने उन्हें कुत्ते नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा।
3: हाँ पापा लो लो इन्हें ले आई मैं।
1: भाई ये बताओ कि घर में एक अजनबी को देखकर क्या कुत्ते भौंकेंगे या नहीं?
2: क्यों साहब, कोई जरूरी तो नहीं है ना?
4: क्यों जरूरी नहीं, अगर अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो फिर कुत्ता कहेगा, ऐसे कुत्ते से तो
3: गीदड़ ही भला।
1: और हकीकत में ये गीदड़ ही है।
3: चोपड़ा अंकल भी अभी अभी बता कर गए कि ये दोनों गीदड़ हैं, गीदड़।
1: ये कैसा हो सकता है? वैसे ही मियाँ जैसे

0: किसने किया है? तुम तो कहते थे कि कुत्ते के बिल्ले बहुत बढ़िया नस्ल के हैं।
1: क्या यही इनकी नस्ल है जो दूसरे कुत्तों को देखकर अंदर घुस जाते हैं, दूसरे कुत्तों को भौंकते देखकर दम दबाकर भाग लेते हैं?
2: गीदड़ तो कुत्ते को देखकर भागेगा ही ना।
0: अरे आप बताओ भाई, तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? क्या बुलाऊं पुलिस को? तभी तो तुम मुझे न पहचानने का बहाना कर रहे थे।
1: सच, कितना शौक था कि घर में कुत्ता पाला जाए जो घर की रखवाली भी करे।
3: अजी जो है सो है, तो ये दूसरे पिल्ले ले लो, ये एकदम बढ़िया किस्म के।
0: खबरदार, जो और पिल्ले देने का नाम लिया तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ।
3: बाबूजी, अरे बाबूजी माफ कर दो ना, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। अजी उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, वैसे हम कुत्ते ही पालते हैं साहब, उनके बच्चे बेचते हैं। उस दिन बेचने के लिए बिल्ले थी, इसलिए मैंने गीदड़ के बच्चों को ही आपको दे दिया। लेकिन लेकिन साहब ये सचमुच बिल्ले ही है।
0: मैंने कहा ना भाई कि हमें कोई बिल्ले नहीं चाहिए, समझे?
3: ये पिल्ले मैं मुंह बदल देता हूँ साहब, गीदड़ को ले जाता हूँ, किसी चिड़ियाघर में दे दूंगा।
1: पर ये तो गीदड़ नहीं निकलेंगे ना?
3: ऐसा हुआ तो बीबी जी, जो चोर की सजा सो मेरी सजा, कसम इन पिल्लों की।
0: अरे सुनो, अगर 6 महीने के बाद ये पिल्ले कुत्ते निकलेंगे तो हम तुम्हें जरूर पूरे पैसे दे देंगे। पहली गलती की तुम्हें माफी।
3: बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। इंसान गरीब में गलती करने के लिए मजबूर हो जाता है ना। कसम इन पिल्ले की। राम राम बाबूजी, राम राम।

कुत्ते के पिल्ले, अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरमीत रामलमीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की भेंट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से। आवाज़ भूमि त्रिवेदी की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ करिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून।

0: मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म भारत से, आवाजें श्रेया घोषाल और नक्काश अजीज की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशाल शेखर का।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म बाटला हाउस से। आवाजें नेहा कक्कर, तुलसी कुमार और बी प्राक्ति थी। गीत के बोल तनिष्क बागची और देव कोहली के, संगीत तनिष्क बागची और विशाल इंदशेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म विक्की एंड विद्या का वो वाला वीडियो से। आवाज सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की थी। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत संदेश शांडिल एंड वाइट नॉइस कलेक्शन का।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45

0: अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद।

0: पाठक।
1: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेक को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। हुन तो कुछ ही पलास तुसी सुनोगे प्रोग्राम आपके लिए।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
4: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है ललित कर।

0: धर्मशास्त्र लगती है कि अब इंसान को उठना मुंह हाथ धोना है, काम काज पर जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सुफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर

को नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं, और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का, और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थी। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इविल हियर नो इविल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा, ऐसी शामों का

ही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

साया गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

मौसम सीधे मन पर असर डालता है। इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। हुन पेश ने मुख्य प्रादेशिक खबरां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित भारतीय खेतर दे उत्तरी जोन 2 लई चंडीगढ़ विच राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस दा उद्घाटन करनगे। राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस दौरान राष्ट्र निर्माण विच विधानसभावां दी भूमिका, विकसित भारत 2047 अते आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस वर्गे महत्वपूर्ण विषयां ते चर्चा कीती जावेगी। असैम्बली स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि कॉन्फ्रेंस लोकतंत्री संस्थावां नूं वधेरे प्रभावशाली बनाउण, विधानक प्रक्रियावां नूं मजबूत करन अते विकसित भारत दे टीचे नूं प्राप्त करन विच विधानसभावां दी भूमिका ते केंद्रित होवेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज हरियाणा दे 8 सरकारी विभागां अते चंडीगढ़ दे 2 विभागां दे IDFC फर्स्ट बैंक अते AU फाइनेंस बैंक विच रखे सरकारी फंडां दी कथित

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोतो प्रोग्राम सरसांच अगला गायक रंजीत बावा।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोते हो, हुण तुसी सुनोगे अगली आवाज राजवीर जवंदा दी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड

0: पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। इस वेले रात दे 11:05 हो चुके ने ते इस दे नाल ही साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। जय हिंद।